0: बताना है तो अलग से फोन पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, उसके 5-10 मिनट के बाद ही यहाँ पे जो हमारे नगर सेवक है और कोई उनके साथ लोग आए थे, और वो जो डिलीवरी बॉय है वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हमारे RMO और हमारे स्टाफ, हमारी मावशी, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। तो इमिजिएटली कुछ बात स्टार्ट करके उन्होंने अपने डॉक्टर्स को मारना शुरू किया था, वो हम लोग वीडियो से, हम लोग ने जो देखा है वही बता रही हूँ। और जो हमारे डॉक्टर थी उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश की तो उनके हाथ पे ये झटका लगा के उनकी फोन भी उस समय हाथ से गिर गई थी। सब लोग काफी डरे हुए थे, हमारी स्टाफ भी कोशिश कर रहे थे, तो वो उसमें डॉक्टर उनके ऊपर भी गिर गए। जो हमारी मावसी खड़ी थी पीछे तो उनको भी 2-3 बार डॉक्टर को मारा गया था, मेल डॉक्टर RMO थे उनको।
1: डॉक्टर दीपा, इस वीडियो में जो दिख रहा है, what we are able to clearly see is that a lady doctor, at least 2 ladies in that video are attacked physically un par assault hua hai. Ramesh Matre jo hain Kalyan Dombivli ke cooperator, ruling Shinde Sena ke cooperator hain, unke khilaf koi bhi action nahi liya gaya hai abhi tak. But what is the reaction among the doctors? They have gone on a strike right now. What are they telling you? किस टाइप का अटैक था? एक तो ये कैमरा पे पूरा रिकॉर्ड हुआ है, व्हाट आर दे सेइंग टू यू मैडम?
0: नहीं, अवर ऑल हॉस्पिटल्स KDMC, वी हैव 3 hospitals, एवरीवन वी कैन नॉट से वी आर ऑन स्ट्राइक, बट वी हैव शट डाउन द रूटीन सर्विसेज, बट वी आर डूइंग इमरजेंसी सर्विसेज, वी हैव अवर 27 हेल्थ सेंटर्स आल्सो, देयर आल्सो वी हैव स्टॉप अवर वर्किंग एट प्रेजेंट, वी आर डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क। The Indian Medical Association, our Kalyan branch and Dombivli branch, they have fully supported us. And हम सब लोगों ने मिलके, हमारे आयुक्त सर जो श्री अभिनव जी गोयल सर है उनको भी मिले हैं हम सब लोग, ऑल अवर सिस्टर स्टाफ डॉक्टर्स और अदर पैरामेडिकल स्टाफ ऑल्सो, एवरी वन इज डूइंग ओनली इमरजेंसी वर्क।
1: What are the doctors telling you, doctors and nurses who are assaulted in this manner, madam? वो उनको वो आपको क्या कह रहे हैं about this horrible incident?
0: नहीं, हमने सबका statement लिया है इसके बारे में, और जो रात में भी हम लोग कल police station रात में भी थे, I was there with them, और अभी हम लोग police station में ही है और FIR का हम दर्ज कर रहे हैं।
1: Is the police cooperating in registering an FIR? FIR क्या दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है?
0: In process, we are in process.
1: Are you facing any resistance, madam? Because ये रमेश मात्रे जो हैं, उनके खिलाफ 2-3 पुराने भी criminal cases हैं, कोई भी action नहीं लिया गया है उसके खिलाफ अभी तक?
0: तभी के तभी वो उस time में जो भी हुआ होगा, तभी वहाँ उस टाइम भी जो अपने सीनियर्स रहते हैं या फिर उनको बताया गया था ये सब उसके बारे में, और अभी इमीडिएटली इनका ही था या पहले भी 1-2 बार हमारे डॉक्टर ने FIR किए हुए हैं।
1: तो ये कैसे हो सकता है डॉक्टर दीपा? एवरीवन इज शॉक्ड व्हेन दे सी दिस वीडियो ऑफ अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अ कॉपरेटर वॉकिंग इनटू अ हॉस्पिटल एंड असॉल्टिंग डॉक्टर्स, दैट टू अ लेडी डॉक्टर इन दिस मैनर। वी आर ऑल शॉक्ड वॉचिंग दिस मैडम, ये कैसे हो सकता है?
0: From them, and now after seeing the total CCTV footage, it was really shocking.
1: What is your demand from the government, madam? Abhi tak FIR is in the process. Do you feel that the government needs to take action immediately? You are, after all, healthcare workers, doctors who have been assaulted by a ruling party cooperator.
0: Pardon?
1: What action do you want to see taken? Do you want to see Ramesh Matre booked and arrested?
0: अभी जो FIR बनेगा उसके बाद में जो यहाँ की पुलिस है वो जो अप्रोप्रिएट एक्शन दे विल टेक, ऐसे हमें विश्वास है।
1: लेकिन ये रूलिंग पार्टी का आदमी है मैडम डॉक्टर शुक्ला, क्या आपको थोड़ा नर्वसनेस है? क्या आपको आपके स्टाफ में कोई डर है कि एक रूलिंग पार्टी का आदमी है जो अंदर आया है आपको मारा है ऐसे?
0: वी आर विथ अवर स्टाफ, दैट इज ट्रू।
1: Okay, I understand your sentiments, madam. NDTV ne is story ko uthaya hai. I have asked you the questions. We will be questioning the government and

0: आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी, और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। डीएनए साझी विरासत से बना है।
1: On that note, stepping into a very short break, more news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: Let's take you through more developments coming in Addis Ababa, where Prime Minister Narendra Modi has outlined a new roadmap for India and Indonesia ties, with defence, maritime security and critical minerals emerging as the key pillars of cooperation. Addressing the Indian community in Indonesia, the Prime Minister said, India is moving forward with the mantra of reform, perform and even transform. And underlining that India's self-reliance is a force multiplier not just for India, but for the entire ASEAN region. Earlier, during talks with the Indonesian president, the two countries agreed to significantly expand cooperation, signing nearly a dozen agreements spanning critical minerals, technology, maritime security. The two sides also inked deals on BrahMos and the Astra missile systems, underscoring India's growing strategic footprint in the Indo-Pacific.
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी हैं।

0: भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा, और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी, और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। डीएनए साझी विरासत से बना है।
1: ऑन दैट वाज स्लिपिंग इनटू द ब्रॉडकास्ट।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: At NETV Profits, every day is a new day. Buzzing.

0: Ajay Dubey is tracking the latest details for us. Ajay, take us through the latest developments.
1: See, it was Govind Devgiri who yesterday he was targeting Champat Rai for various questions we have asked to him regarding the financial fraud happened in Ram Mandir Trust. He was saying he was just having a profile post but not had any authority on the process of cash collection or submission. So he was making various comments. He said that Champas was surrounded by wrong individuals. His people betrayed him. Many things he said regarding Champat Rai. In the evening, we have seen a statement given by Champat Rai, and in this statement, he was very harsh and making it very clear that he will say whatever he wants to say when this SIT investigation will be done. And today, in the morning only, Govind Devgiri reached to meet Champat Rai. And what we have seen yesterday, he was very aggressive on Champat Rai. We were informed by the other trust members that Champat was not in mood to give his resignation, but Govind Devgiri forcefully took his resignation. And today, he is going to meet Champat Rai. So this is what a new development in the Ayodhya. And one more development is that police is now doing interrogation with three of the accused. They were in the jail, and in the morning only police took him from the jail after the remand given to the police. And they are in police line. They are interrogation. The interrogation is going on, and later on police will take them to the various spots. Police is trying to create a map so that they can get more and more details about the activity, what they have done during the case.
0: Ajay, we'll of course continue to track how this probe progresses. Thanks so much for disclosing the details. Well, meanwhile, former Ram Janmabhoomi Trust General Secretary Champat Rai has taken a vow of silence, saying he will respond only after the final SIT report is out. In fact, in a statement to the investigators, he has questioned the counting process and flagged alleged security lapses on part of the bank. Champat Rai further alleged that the bank did not properly implement key safeguards. But the opposition says the resignations are not enough and alleges a bid to shield Champat Rai as well as other trust members. Demanding that the trust actually be dissolved, the opposition also wants accountability fixed at the highest levels right up to the Prime Minister. The BJP, though, continues to hit back strongly, with Yogi Adityanath accusing the opposition of trying to defame Ayodhya.
2: मुझे तो आश्चर्य होता है, आपने गत दिनों अयोध्या के अंदर देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में घटना घटित हुई। ट्रस्ट ने बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि ट्रस्ट में ऐसी घटना घटित हुई है, समाचार पत्रों में मीडिया के माध्यम से कुछ चीजें कतिपय चीजें सामने आ रही हैं। अगर हम सफाई देंगे तो हो सकता है लोगों को विश्वास न हो, और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार एक हाई लेवल की एसआईटी गठित करे और उस एसआईटी के माध्यम से सच्चाई समाज के सामने आनी चाहिए।
3: शुरुआत से ही इन्होंने गलती करी, क्योंकि जिस नरसिंहराव जी वक्त में जो ट्रस्ट बना था तो उसमें साधु संतों को, धर्माचार्यों को, उनको लेके ट्रस्ट बना था। वैसे ट्रस्ट बनता भी है, मान लो अभी ये नौबत नहीं आती, उसमें आप अपने साथ में कुछ लगा देते अधिकारियों को, कोई दिक्कत नहीं थी। पर जिस रूप में इन्होंने जो एक तरफा बीएचपी आरएसएस के लोगों को लेके ट्रस्ट बनाया गया और कोई जवाबदेही तय नहीं की गई, कहते कि बहुत पहले से मालूम पड़ गया था कि चोरी हो रही है, एसबीआई या कोई बैंक जो थी वो गिनती के अंदर, काउंटिंग के अंदर दूसरे लोगों को घुसा दिया गया, जो कैमरे लगे हुए थे वो गवाह दे रहे थे, अधिकारियों के आपस के अंदर चर्चा भी करी और उन बातों को दबा दिया गया। तो ये बात बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई।
4: देखिए, राम मंदिर का जो ये प्रकरण आया है जिसमें भारी पैमाने पर चंदा चोरी, जेवरों की चोरी, आभूषणों की चोरी है, और जिस तरह से जमीनों की खरीद फरोख्त में चोरी ये सब हुई है, उसको लेके पूरा देश पर आहत है, चिंतित है आगा। और ऐसे लोग जो भाजपा के समर्थक होते थे वो भी अब कह रहे हैं कि भाई तो बहुत गलत काम हुआ है, ये नहीं हमने कल्पना में भी सोचा था कि लोग ये काम करेंगे, भगवान राम के मंदिर को लूट लेंगे।

0: हम भगवान राम के साथ जो है विश्वासघात करेंगे, वहां चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी करेंगे, ये नहीं सोचा था। तो इससे पूरा देश जो है बहुत चिंतित है।
1: ये पांच नाम सजेस्ट किए हैं किसको सीईओ बनाया जाए, और पांचों की काबिलियत ये हुआ कि महान भ्रष्ट है। तो अब अभी नहीं सुधरेंगे ये, तो कब सुधरेंगे? मोदी जी आपकी छवि बिगड़ रही है, अमित शाह जी आपकी छवि बिगड़ रही है, अरे महंत जी आपके मठ ने तो 19वीं सदी से राम जन्मभूमि का की लड़ाई लड़ी है, एक व्यक्ति भी क्या हमारे गोरखनाथ मठ से एक आदमी की भी नियुक्ति ट्रस्ट में क्यों नहीं करवाई आपने? आपका आदमी होता तो ये बिल्कुल नहीं होने देता, हमको आपकी लीडरशिप पे भरोसा है। आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो हम उसकी तारीफ करते हैं, हालांकि आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि सारे सारे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को संरक्षण मिला हुआ है दिल्ली से।
2: And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai. रमेश जी, ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
3: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
2: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
3: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
2: सर, वीडियो
3: फोन कान से हटाया, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
2: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
3: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
2: आपको किसने
3: हम शिव सैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
3: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
2: वैभव पे आपने हाथ उठाया है,
3: लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके
3: फोन के ऊपर, हमने फोन उसका अलग किया,
2: अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
3: हमसे बात नहीं कर रही थी
2: ये
3: वो।
2: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल
3: सकते। गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया, फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी,
3: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
2: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
3: हमको हक हमारे पार्टी के बाला साहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
2: हाथ उठाने का हक बाला साहेब
3: हमारे भी
2: आपको
3: वहां एक,
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
3: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए,
3: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था वो सुने हमारे।
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
3: दो मिनट दीजिए,
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
3: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से

0: निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था, और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रही थी, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें, नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
1: तो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया गया।
0: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
1: महिला डॉक्टर
0: नहीं उठाया हमने।
1: अगर बेड अवेलेबल नहीं है, अगर बेड अवेलेबल नहीं है, क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ, आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी, आपका ही सरकार है। आप
0: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
1: क्यों नहीं फोन करते?
0: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
1: अरे वाह सर,
0: सुविधा लेके पेशेंट को
1: आपने कानून बोला,
0: बराबर
1: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
0: राहत देना, और
1: कानून का शब्द
0: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में, और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आ रहा है आता है, तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो पूरा ग्रामीण कल्याण ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना, वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है, और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से उसको वो जो घटना घटी ना, वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला, और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए,
1: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
0: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर, एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
1: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है वो पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं NDTV पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
0: नहीं
1: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
0: नहीं, मैं फोन के ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
1: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
0: झटके से फोन हटाया,
1: फोन पे मारा है,
0: फोन पे मत रहो बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते है,
1: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया? आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
0: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
1: इधर उधर मत कीजिए,
0: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
1: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
0: आप
1: गुंडे कैसे बन सकते हो?
0: सीधा जवाब देगा,
1: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ
0: जान बचाने के लिए
1: जो आपने जो किया है,
0: मेरे को तो उधर डॉक्टर गुंडे लगे।
1: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
0: कुछ नहीं किया है,
1: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप
0: हेल्थ
1: डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के भी पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो नागरिक पर?
0: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे CMO ने
1: मतलब
0: मैडम
1: उसके साथ बात
0: तो रमेश जी, मामला कैसे सोल्व हो गया और 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
1: रमेश जी शर्मिंदा मत,
0: डॉक्टर
1: आप बेसिकली
0: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था,
1: तो फिर आप ये सुनो,
0: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
1: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर
0: दलित समाज को बेड नहीं मिला, लड़की थी
1: आगे सर, ये सब
0: ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे।
1: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब उसके पीछे मत छुपिए आप। दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें
0: नहीं नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक,
1: हम मूर्ख नहीं है,
0: हमको चुन के
1: दिया है
0: डॉक्टर ने, चुन के नहीं
1: दिया है, आपको नहीं जाने देंगे।
0: नहीं, हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर।
1: आपको
0: सर
1: मेरा सवाल सुनिए,
0: चुन के दिया,
1: सवाल सुनिए,
0: लड़ेंगे ना
1: रमेश
0: माथुर। डॉक्टर का तो हम सम्मान करते कि कोरोना के सीजन में, कोरोना का
1: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए, मैंने
0: बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया,
1: जिसको
0: हम कभी भूलेंगे नहीं।
1: डॉक्टर के लिए सम्मान जो है आपके पास
0: बेकार था, हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर।
1: सीधा सवाल
0: ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: क्या बोल रहे हैं
0: पेशेंट के
1: सर? क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ,
0: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं, गुंडा गुंडा बोल रहे हैं सर, हम कौन सा टोन वापरेंगे?
1: मैं सीधा सवाल सुनिए,
0: हमको शर्म नहीं आई, पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर।
1: नहीं नहीं, आप दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है, क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
0: नहीं सर, एक मेरा
1: बात नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है।
0: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट।
1: नहीं, सीधा सवाल सर,
0: ऐसा
1: सीधा सवाल है।
0: मेरे को तीन लड़के, मेरे को दो बहने, मेरे को तीन बहुई है, तीनों का इनका सबका डिलीवरी में कभी हम उसका चिल्लाना,
1: किसी को फर्क नहीं पड़ता, ये सब बोलने का
0: वो हमको नहीं देखने को मिला। लेकिन नहीं सुनो, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसा पेशेंट हमने हॉस्पिटल में देखा है जो
1: वो आपका काम है,
0: जमीन के ऊपर चिल्लाते पेन सहन करते हुए,
1: जो भी है वो आपका काम है। आप हाथ नहीं उठा सकते,
0: क्या चीज होते है डिलीवरी के टाइम, एक औरत का हालत क्या है,
1: जो भी है वो सब आपका काम है। आपने किसी पर फेवर नहीं किया सर, वो आपका काम है, पब्लिक
0: जो भी हुआ ना,
1: ये आपका काम है,
0: जो हुआ उसका
1: कोई बड़ी बात नहीं है,
0: हमने जताया है
1: सर। आप जो
0: हमको
1: काम करते हैं,
0: बात करने
1: आपका काम है सर,
0: हम आते ही नहीं, अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर,
1: तो आपके पास
0: फोन उठा था, अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो
1: हमको
0: जरूरत ही नहीं पड़ता था।
1: आखिरी सवाल आपसे रमेश जी, अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है, क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव, जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
0: दलित थी और मेरे को सर सुनिए
1: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर द लॉ व्हेन वायलेंस हैज बीन यूज्ड,
0: नहीं फर्क पड़ता है। बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है, और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
1: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो,
0: अभी मारूंगा।
1: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
0: मैंने किया है,
1: आप कुछ
0: एक दो जान बच
1: रहे हैं,
0: मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए हैं, हम SSC पास है
1: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
0: हमारे
1: पास एक नैरेटिव जान बच गई है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ,
0: आपको और उसके माँ की जान बच गई है।
1: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? एनडीटीवी, आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
0: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे
1: वो, जो गुंडे हैं, ये विजुअल देखिए एनडीटीवी पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
0: तो सर वो उसके आंखों में आंसू है,
1: जो टीवी पर
0: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
1: क्या आगे जाके
0: आदमी नहीं
1: करेंगे आप? आगे जाके
0: काम उसका नहीं था,
1: ये सब छोड़िए,
0: हमारे सीएम ने
1: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो, अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आपको गुंडा आ जाएगा,
0: वो आपकी भाषा में हो गए सर, लेकिन हमको तो अगर हम उधर नहीं जाते तो दो दो एक बच्चे के और माँ की जान चली जाती सर,
1: आखिरी दो सवाल,
0: वो हम उधर गए और इसके लिए उसकी जान बच गई, अभी भी वो सेफ नहीं है,
1: मुझे समझ में आ गया कि
0: कंडीशन में बच्चू है वो,
1: मुझे समझ में आ गया कि
0: वो आप सुनो उसके बारे में भी आप सोचे ना सर?
1: नहीं, मैं सब कुछ सोच रहा हूँ, अगर सर अगर बेड अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल में, बेड अवेलेबल नहीं है, अगर कोई काम नहीं कर रहा है,
0: मांगता था,
1: ये आपकी सरकार है, ये आपकी सरकार है,
0: 5 घंटे में 5 घंटे अगर उसके साथ रो,
1: आप बेचारे डॉक्टर्स को जाके मार रहे हो सर, बेचारे डॉक्टर्स को जाके
0: बेचारे कैसे हो
1: सर, आपकी सरकार है, अगर बेड नहीं है हॉस्पिटल में, ये आपकी गलती है, आपकी सरकार की गलती है,
0: बेचारे डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन उसको भगवान नहीं दिखे मेरे को,
1: आपने भगवान को मारा है,
0: डॉक्टर तो भगवान होते हैं, दूसरे
1: आप भगवान को मारा है, तो आखिरी सवाल,
0: एक पेशेंट को वो
1: आखिरी सवाल, ये सब
0: तो
1: हमने बात कर लिया है,
0: आशीर्वाद देते हैं, जान बचाते हैं,
1: आपकी बात सुन लिया हमने, आखिरी सवाल,
0: आपने हमको ब्लेम किया है और वो ब्लेम हम नहीं मानते, हमने कोई लेडी डॉक्टर को मारा नहीं है, ना किसी को मारा है हमने, जो भी
1: आखिरी सवाल,
0: बच्चे का जान बचाने, माँ का जान,
1: दर्शक और नागरिक देख रहे हैं वीडियो पर, दर्शक और नागरिक देख रहे वीडियो पे कि आप कि क्या हुआ है और क्या बोल रहे हैं, वो उनको उनको तय करने दीजिए, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल,
0: वो खाली हंगामा देख रहे हैं,
1: सवाल,
0: सिचुएशन उनको मालूम नहीं है, सिचुएशन यही है कि वो लेडी को लेबर पेन चालू था, बच्चे ने
1: आपके हाथ उठाते हुए
0: और उसका आखिरी एंड आया था, सायन सायन हॉस्पिटल में बंबई डूब चुकी थी, अभी सायन
1: वीडियो है सामने, डॉक्टर्स और नर्सेस स्ट्राइक पर है अभी,
0: इमरजेंसी सर्विसेज, उसकी मां के आंसू भी देखिए सर,
1: लास्ट लास्ट लास्ट
0: आंखों के आंसू भी देख लीजिए आप सर,
1: नहीं हम अब
0: आज भी वो रो रही है,
1: आप घुमा रहे
0: हैं, उसका बच्चे का जान खतरे में है सर,
1: आप सीधा जवाब देने के लिए रो रही है, लास्ट में
0: ये सही है
1: सर, आपने
0: कुछ नहीं सोचेंगे,
1: आपने आपने आपने दलित कार्ड खेला है, आप सिंपथी कार्ड खेल रहे हैं, आप झूठ भी बोला है आपने कि आपने हाथ उठाया नहीं किसी पे, सब कुछ वीडियो पे है, आखिरी सवाल,
0: झूठ बोला, हम जो सिचुएशन है वो सही सही बताया है,
1: आखिरी सवाल, आखिरी सवाल,
0: आप पूछो कितना आखिरी सवाल पूछ,
1: जब ये इंटरव्यू,
0: ये नहीं मानेंगे कि हमने महिला के ऊपर हाथ उठाया, हम डॉक्टर को इज्जत करते हैं, कोरोना में उन्होंने बहुत बड़ा
1: कितना इज्जत है, कितना इज्जत है,
0: हम उसका नाम भी नहीं सकते,
1: कितना कितना इज्जत है डॉक्टर
0: बड़ेकर मैडम ने 200 पेशेंट
1: सब लोग देखे हैं, मैं लूप पे प्ले करूंगा इस वीडियो को ताकि डोंबिवली के लोग, कल्याण के लोग, मुंबई के लोग, महाराष्ट्र के लोग बार बार देखें कि आपने क्या किया है, वो सब छोड़िए, आखिरी सवाल, क्या आपको अफसोस है, क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर वैभव, डॉक्टर श्रुति, आप सर सीधा सवाल क्या आपको अफसोस है, क्या आप माफी मांगेंगे, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
0: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है, हमने कोई लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया ना कभी उठाऊंगा,
1: इसका मतलब कि आगे जाके भी
0: सर
1: अगर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही जाएंगे आप डॉक्टर्स के ऑफिस के में जाके आपके गुंडों के साथ आप मारेंगे,
0: आगे जाके ऐसा आप किसी पेशेंट के ऊपर नौबत है सर, सुनिए अभी भी हम कॉर्पोरेशन में है और आगे चल के ऐसा नौबत पेशेंट के ऊपर नहीं आना आएगा, ऐसा काम हम करेंगे इधर,
1: तो आप करेंगे,
0: हुआ है एक तरफ से ताली नहीं बजती है सर,
1: तो आप दो साइड से ताली नहीं बजती, लेकिन
0: ऐसा
1: आप
0: काम करेंगे कि ऐसा नौबत ही नहीं आके
1: याद रखिए
0: पेशेंट के लिए बेड की वजह से
1: रमेश
0: बाहर जाना पड़े।
1: आपके पास पिछले भी केसेस हैं,
0: जो
1: पुराने भी केसेस हैं,
0: बारिश का मौसम है,
1: पहली बार नहीं,
0: बारिश का मौसम है सर, बारिश का मौसम है, बम्बई में गाड़ी नहीं जा सकते, पूरा बम्बई कल डूब चुका था, पूरा बम्बई गवर्नमेंट सरकार ने बंद किया था,
1: आई वॉन्ट
0: होम किया था, स्कूल बंद था, कॉलेज बंद थे, ट्रेन बंद थी, सब रास्ते बंद, कैसे जा सकते थे साइंस हॉस्पिटल
1: सर,
0: जान को खतरा था सब। और
1: जब रमेश जी बॉटम लाइन ये
0: बात मालूम पड़ी सीओ ने आधे घंटे में ये प्रॉब्लम
1: सर, लोग आपसे आपे
0: पांच घंटे में ये डॉक्टर
1: लोग आप पे हंस रहे हैं सर,
0: नहीं साउंड हो रहा होगा इसके बाद
1: लोग आप पे हंस रहे हैं, ये ऑलमोस्ट कॉमेडी बन गया है अब सर, क्योंकि पूरा पूरा वीडियो है उनके सामने,
0: मेरे को आनंद है,
1: पूरा वीडियो सामने है और आप बोल रहे हैं
0: दो जान बच,
1: लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ
0: उसका हमको आनंद है सर,
1: लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ, ये आपकी सरकार है सर, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप कानून के अंदर काम करने के लिए चुने हुए हो, आपने कानून के अंदर काम नहीं किया है, किसी पे हाथ उठाया, गुंडों को लेकर हिंसा फैलाया एक हॉस्पिटल के अंदर, ये है बॉटम लाइन, ये है बॉटम लाइन, और आप एनडीटीवी पे बोल रहे हो कि आगे जाके भी ऐसे ही करोगे,
0: इतने बड़े पत्रकार
1: सर,
0: अगर डॉक्टर का ही साइड लेके आम पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे तो जनता किधर जाएगी सर, आप ही तो चौथा कॉलम इस सब,
1: नहीं नहीं वो आपने फिर से एक नैरेटिव फैलाया है,
0: गरीब आदमी के बारे में नहीं सोचेंगे, खाली डॉक्टर के घमंड के बारे में सोचेंगे
1: सर, अगर गरीब सर, अगर गरीब अगर दलित
0: जो अगर रियलिटी है,
1: सुनिए
0: आप दिखाना,
1: अगर दलित लोगों गरीब लोगों को बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिल रहा है, अगर बारिश हो रही है और लोगों को दिक्कत है मुंबई में, वो आपकी सरकार की गलती है, आपकी सरकार से सवाल कीजिए, उन पर हाथ उठाइए, डॉक्टरों पर मत
0: सोचने का टाइम नहीं था ना सर, उसका जान भी बनी थी, वो सोचने का टाइम,
1: आपकी आपकी बहादुरी, आपकी बहादुरी वहीं वहीं पे खत्म हो जाता है जहाँ पे आपकी सरकार पर सवाल उठने का टाइम आता है,
0: उसके लिए उपाय था सर, उसके लिए उपाय था, लेकिन ये डॉक्टर ने नहीं किया, सीएमओ को बताया तो उसने आधे घंटे में सब प्रॉब्लम सोल्व किया, इसके बारे में भी बोलिए आप,
1: आपने
0: पांच घंटे में उन्होंने क्यों नहीं ये दो डॉक्टर ने सोल्व किया ये प्रॉब्लम,
1: आपने आपने अफसोस
0: पांच घंटे में डॉक्टर ने,
1: लेकिन आपने
0: साधिया मैडम
1: आगे जाके भी लास्ट पॉइंट फाइनल पॉइंट
0: किया सर,
1: फाइनल पॉइंट
0: रमेश जी, पूरा प्रॉब्लम सोल्व किया कॉर्पोरेशन के रूल के मुताबिक, ये इसके
1: आखिरी मौका देख रहा हूँ
0: मैडम के ऊपर मैं अभिनंदन करता हूँ, उसको साधिया मैडम को मैं दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने आधे घंटे में प्रॉब्लम सोल्व किया, लेकिन ये डॉक्टर ने पाँच घंटे में प्रॉब्लम सोल्व नहीं किया, ना साधिया मैडम को हमको फोन नंबर दिया ना हमारा फोन अटेंड किया, अगर
1: एक लास्ट मौका देता हूँ,
0: नौबत ही नहीं आती थी,
1: उधर जाने का
0: एक ही बात था, साइन लेके जाओ, साइन लेके जाओ,
1: इसके बाद
0: आपका रुक आउट है करके
1: रमेश जी,
0: हम कैसा लेके जाएगा, ऐसा हम बोले तो बोलते हैं
1: आपके बहुत एक्सक्यूजेस है सर, आप बहुत
0: ये भी नए है डॉक्टर,
1: लास्ट पॉइंट
0: सर, ये डॉक्टर
1: सुन लिया सर आपके आपके जो एक्सक्यूजेस है, बहाने है, हमने सुन लिया,
0: उसने गाइडेंस लेना जरूरी था,
1: लास्ट पॉइंट
0: नहीं,
1: मैं आपको एक आखिरी मौका,
0: अगर पब्लिक
1: आखिरी मौका
0: चलेगा, ये
1: आखिरी मौका दे रहा हूँ,
0: आखिरी
1: मौका,
0: लेकिन
1: आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको,
0: पत्रकार
1: आखिरी मौका दे रहा हूँ,
0: सरकार
1: क्या
0: को सवाल पूछ सकते हैं आप, अगर गलत साइड लेंगे तो कैसा होगा सर, पब्लिक का साइड भी लीजिए ना,
1: आखिरी सवाल मैं
0: रो नहीं रहा हूँ, मेरा पब्लिक पानी आ रहा है,
1: मैं पब्लिक और सिटीजंस के लिए बोलता हूँ हमेशा, इसलिए मैं आपको एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, आखिरी मौका देता हूँ रमेश जी, आप एक कॉर्पोरेटर हो रूलिंग पार्टी के, आखिरी मौका,
0: सवाल पूछे ना उनका,
1: आखिरी मौका, आपके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता
0: सर,
1: आपके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं नहीं मेरे लास्ट पॉइंट मेरे सुनिए,
0: आंसू नहीं है, आखिरी आंख का प्रॉब्लम है, मेरा आंख का प्रॉब्लम है, आंसू नहीं है मेरे,
1: ठीक है, मैं आपको लास्ट मौका दे रहा हूँ, लास्ट मौका दे रहा हूँ, जो कुछ भी हुआ है क्या
0: आपके, अरे बारे में बोलिए ना सर, बच्चों कृष्ण के बारे में
1: आखिरी मौका,
0: कृष्ण के बारे में
1: आखिरी मौका,
0: अगर
1: आखिरी मौका, आखिरी मौका,
0: कृष्ण के बारे में बोलिए ना सर,
1: आखिरी मौका,
0: कृष्ण के बारे में सवाल पूछेगा तो बहुत अच्छा लगेगा
1: सर, आखिरी मौका, आखिरी मौका, क्या आप अफसोस एक्सप्रेस करेंगे, माफी मांगेंगे डॉक्टर्स और नर्सेस से, आप नेशनल टीवी पे, आखिरी मौका, क्या आप माफी मांगेंगे?

0: अफसोस एक्सप्रेस
1: मैं
0: करेंगे कि ऐसे
1: माफी नहीं
0: नहीं
1: मांगूंगा,
0: हुआ।
1: लेकिन हमारे कॉरपोरेशन में ऐसी घटना होती है, इसका हमको बहुत अफसोस होता है, और आगे चल के हम हॉस्पिटल में पूरा सुधारने का प्रयास करेंगे कि ये नौबत नहीं आएगी। और ये
0: डॉक्टर
1: ऐसे
0: वैभव,
1: डॉक्टर अगर
0: डॉक्टर वैभव,
1: रहेंगे तो उसके लिए
0: डॉक्टर श्रुति
1: प्रशिक्षण
0: को
1: करेंगे,
0: जिस पर आपने हाथ उठाया
1: प्रशिक्षण
0: उसको
1: देंगे,
0: उससे
1: कि
0: माफी
1: डॉक्टर
0: माफी
1: पब्लिक के
0: मांगेंगे
1: साथ
0: आप?
1: पेशेंट के साथ कैसा पेश आना है,
0: डॉक्टर श्रुति,
1: तो
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर से भी
0: वैभव
1: ना गलती
0: और
1: हो,
0: नर्सेज पर
1: हमारे
0: आपने जो
1: डॉक्टर से
0: हाथ
1: गलती भी
0: उठाए,
1: ना हो
0: क्या
1: कहा
0: आप
1: आपको
0: उनसे
1: पेशेंट के
0: माफी
1: हैंडल करने के
0: मांगेंगे
1: लिए,
0: या नहीं
1: वो भी
0: मांगेंगे?
1: प्रशिक्षण हम हमारे
0: नहीं
1: डॉक्टर को
0: मांगेंगे।
1: देंगे सर। हम
0: ओके, आई वांट टू लीव इट टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र नाउ,
1: प्रशिक्षण कैंप लगाएंगे
0: टू
1: कि
0: द पीपल
1: डॉक्टर
0: ऑफ द रूलिंग पार्टी इन
1: जाएगा
0: महाराष्ट्र नाउ टू
1: तो
0: सी
1: उनके पास
0: हाउ अ
1: गलती
0: शेमलेस
1: रहेगी।
0: कॉर्पोरेटर सेज वी विल सी गोइंग
1: अगर
0: फॉरवर्ड व्हाट
1: डॉक्टरों
0: हैपेंस।
1: से गलती हुई
0: बेसिकली
1: रहेगी तो
0: द
1: हम
0: शॉर्ट
1: उसको
0: पॉइंट
1: माफ
0: इज,
1: करेंगे, हमारे से गलती हुई रहेगी तो हम भी माफी मांगेंगे सर,
0: ओके,
1: लेकिन ये
0: तो आप
1: ऐसा
0: माफी
1: नहीं
0: मांग रहे
1: होना
0: हैं।
1: चाहिए दोनों तरफ से भी। हाँ,
0: एंड FIR हैज बीन
1: हम
0: लॉज्ड
1: उसको भी
0: अगेंस्ट
1: माफ कर रहे हैं,
0: रमेश
1: और
0: मात्रे
1: हमारे
0: आफ्टर
1: से गलती
0: NDTV's
1: हुई रहेगी
0: कवरेज।
1: तो हम भी माफी मांगते हैं।
0: बिल्कुल ठीक है, तो इसी इसी नोट पर हम एंड करते
1: हमारे से
0: हैं।
1: नहीं रहा,
0: रमेश मात्रे
1: अगर
0: जी,
1: डॉक्टर का
0: आपने
1: गलती
0: माफी
1: हुआ
0: मांगी है।
1: रहेगा, डॉक्टर का गलती हुआ है तो हम उसको माफ करेंगे ये बोल के कि वापस ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे से गलती हुई रहेगी तो हम भी माफी मांगते हैं कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। चलो,
0: ओके चलो, इसी पे एंड करते हैं।
1: लेकिन आप
0: रमेश
1: पब्लिक का
0: मात्रे
1: बात भी सुनिए
0: ऑफ
1: सर,
0: द
1: गरीबों का बात भी सुनिए।
0: सर
1: ठीक है,
0: हमारा
1: ठीक
0: पूरा
1: है,
0: काम
1: थैंक यू
0: पब्लिक
1: वेरी
0: के
1: मच।
0: लिए है
1: मेरे
0: सर।
1: को मेरा कहना
0: थैंक यू।
1: बोल कहना हाँ, आप भी पब्लिक के लिए अगर बोलेंगे तो बहुत खुशी होगी सर। धन्यवाद सर।
0: वो हमारा काम है सर, हम हमारा काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो दैट वाज द शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश मात्रे, एज यू सी ट्रैपिंग हिमसेल्फ इन हिज ओन कॉन्ट्रडिक्शंस, वांटिंग टू रिग्रेट, बट आल्सो द गुंडा इन हिम कमिंग आउट। दैट इज द रियलिटी ऑफ इट, एंड दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ व्हाट NDTV's कवरेज हैज एक्चुअली डन। एंड FIR वाज लॉज्ड मिनट्स आफ्टर NDTV पिक्ड अप द स्टोरी लास्ट इवनिंग ऑन प्राइम टाइम, विदाउट विच इवन एन FIR वुड नॉट हैव बीन लॉज्ड। वी हैड अ doctor from that hospital live with us from the police station. As a matter of fact, these are ruling party persons raising their hands against citizens, and that's the reason why there is so much outrage. Back to the studio.
2: Shiv, as always, thank you so much. Well, you've heard, speaking to NDTV, Ramesh Mahatre has denied assaulting any woman doctor or nurse, despite the visuals we have shown you. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman, says he respects women, and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. We'll continue to track how this probe progresses. For now, we're slipping into a quick break. Back in a moment.

0: just trying to go inside and show you the pictures of their houses, that how the water has completely entered. These are the pictures we are showing you. You see, they used to stay over here. But now, since the water has entered their house, they are compelled to move out. And this heavy rain, this is complete, you know, a knee-level water is what I can see from here right now.
1: रात से बारिश हो रही थी, हमारा भी एक तो हम लोग सुबह उठ के देखे तो ये सब ये पानी पूरा भरा था, तो हम लोग बिस्तर उधर रहे, एक गैस हो ऐसे पड़ा है सब. सुबह से हम लोग लॉन्ड्री में सूत रहे थे.
0: तो कितने लोग रहते हैं आप?
1: हमें यहाँ पर रहते हैं पांच लोग.
0: पांच लोग रहते हैं यहाँ पर और पूरा कमरा पानी में भर गया.
1: कमरा पानी में भर गया.
0: वेल, इट वाज एक्सपेक्टेड दैट 300 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल वुड हैपन ओवर हियर इन नाशिक एंड नियर बाई एरियाज एज वेल, एंड अ क्लाउड बर्स लाइक सिचुएशन वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टेड. हाउ एवर द सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज इट वॉज प्रेडिक्टेड, बट येस द पिक्चर्स एक्चुअली शो इन द विजुअल्स एज वेल यू कैन सी दैट वॉट द level of water is and how the people are staying over here when it is difficult for us in fact to stand over here for even 5 minutes. They actually stayed here yesterday night because they had no option, and then in the morning they stepped out of their houses, and now they are completely homeless, they say, because they do not know that where they have to go and what actually they have to do.

0: पूरा ग्रामीण कल्याण ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना, वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया सीएमओ का हमारा। फिर से उसको वो जो घटना घटी ना, वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला। और हमारे सुनिए बात मेरा सर, सर मेरा बात सुनिए।
1: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया। आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
0: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर, कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप।
1: रमेश जी आपके पार्टी, आपके सरकार, आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए। आपने जो किया है ये पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है।
0: नहीं,
1: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
0: तो मार रहे ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
1: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
0: झटके से फोन हटाया,
1: फोन पे मारा है।
0: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था। बम्बई कैसे जा सकते हैं पेशेंट, बम्बई कैसा पहुंच सकता है साइन हॉस्पिटल?
1: फिर से मैं पूछता हूं आपसे, आपको हक किसने दिया?
0: बोलो
1: जाने का, आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया।
0: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
1: इधर उधर मत कीजिए।
0: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए, भगवान ने डॉक्टर बनाया।
1: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए। आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
0: आप
1: गुंडे कैसे बन सकते हो?
0: सीधा जवाब देगा,
1: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
0: जान बचाने
1: आपने जो सर, अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते। आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
0: कुछ नहीं किया है,
1: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप आज कैसे उठा सकते हो नागरिक पर?
0: अगर हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
1: मतलब
0: दिया मैडम
1: उसके
0: साथ बात करने के बाद आधा घंटे में मामला कैसा सोल्व हो गया? और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
1: रमेश जी शर्मिंदा मत,
0: डॉक्टर
1: आप बेसिकली
0: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था।
1: तो फिर आप ये सुनो,
0: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग?
1: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
0: लड़की थी
1: आगे,
0: सर ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे।
1: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड, ये सब उसके पीछे मत छुपिए। आप दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, उसमें
0: नहीं नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर।
1: नहीं,
0: उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
1: हम मूर्ख नहीं है,
0: हमको
1: हम
0: चुन के
1: दिया
0: डॉक्टर ने, चुन के नहीं
1: दिया, आपको नहीं जाने देंगे।
0: नहीं, हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर।
1: आपको
0: सर
1: मेरा सवाल सुनिए,
0: चुन के दिया,
1: सवाल सुनिए,
0: लड़ेंगे ना
1: रमेश
0: माथुर जी, डॉक्टर का तो हम सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
1: आपका जो सम्मान है डॉक्टर्स के लिए, मैंने
0: देखा बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया, जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं।
1: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
0: बेकार था,
1: साफ साफ
0: हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे।
2: That was Shivaroor speaking to the main accused. And of course, NDTV's impact as far as the Sena Corporator case is concerned, the Federation of All India Medical Association, FIMA, has expressed its strongest, condemnation.

0: दोनों देशों के तेज विकास के लिए परमात्मा से प्रार्थना की है, भक्ति भाव से पूजा की है।
1: This occasion is even more special because I had the opportunity to visit this sacred temple complex along with my dear friend President Prabowo. I prayed here for the stronger ties between India and Indonesia, for strengthening the friendship amongst our people, for the well-being of the people of our countries, and for the rapid progress and prosperity of our two nations.
0: मुझे पूरा विश्वास है, मेरे मित्र राष्ट्रपति जी जिस प्रकार से किसी काम को हाथ में लेते हैं, तो एक फौजी के नाते बहुत वेल प्लान करते हैं और समय से पहले पक्का पूरा करेंगे। और आज उन्होंने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि 29 के पहले इस काम को हम कर लेंगे और आपको दोबारा आना है। मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इसके पुनर्निर्माण के बाद जरूर यहां आऊंगा और आपके साथ इस उत्सव को मनाऊंगा।
1: टुडे एंड आई वुड लाइक टू कन्वे दैट प्रेसिडेंट प्रबोवो, being a soldier himself, he knows how to plan things. So when he has planned this restoration, there is a clear strategy. And with this planning, I'm sure that the restoration work will happen ahead of time. And today, my friend President Prabowo also made me promise him that we will finish this work before 2029. And I need to make a return visit once again to Indonesia to inaugurate the temple complex after restoration. And in front of all of you, let me reiterate my promise. With our joint efforts, we will finish this work before 2029. And together, we will celebrate the restoration and the inauguration as a big festival.
0: Rashtrapati ji, main इंडोनेशिया में लैंड हुआ और अब थोड़ी देर के बाद विदाई दूंगा, लेकिन आपने जो समय निकाला, पूरा समय आप मेरे साथ रहे और हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से आपने बारीकी से इसका प्लानिंग किया, एग्जीक्यूशन किया, एक मित्र के नाते इतने शानदार स्वागत के लिए, इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ

0: And joining me live from Mumbai is Ramesh Bhatre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh, NDTV se baat karne ke liye dhanyawad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Ramesh ji. ये जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
0: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर। वीडियो
1: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो।
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
0: आपको किसने
1: हम शिवसेना के लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
0: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
0: वैभव पे आपने हाथ उठाया होगा,
1: लेकिन वो जो
0: गुंडे
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
0: नहीं किया। आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी।
0: ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल
1: सकते। गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
0: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
0: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे। आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बाला साहब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो।
0: हाथ उठाने का हक बाला साहब
1: हमारे भी
0: आपको
1: वहां एक।
0: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
0: सर ये वीडियो तो देखिए।
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था वो सुने हमारे।
0: 20 सेकंड मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए,
0: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
0: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
0: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
0: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ, आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
0: क्यों नहीं फोन करते?
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा। अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो

0: इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और कानून का शब्द यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप मैं हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आ रहा है आता है तो वहाँ मैं दो बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ पूरा ग्रामीण कल्याण ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा फिर से उसको वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए
0: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं आप मैंने सुन लिया आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे कि आप एक जननायक हो ठीक है आप एक हीरो हो आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे आपने आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है ये आप बोल रहे हैं मैं आपसे
1: सरासर झूठ है हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
0: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए आपने जो किया है ये पूरा सामने है सब देख रहे हैं NDTV पर ये वीडियो सामने है आपका हाथ दिख रहा है
1: नहीं
0: जो गुंडे हैं आपके साथ है
1: तो मार रहे ऊपर उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से
0: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है
1: झटके से फोन हटाया फोन पे मत रहो बिजी रहो पेशेंट के बारे में सोचो यही बोल रहा था बंबई कैसे जा सकते पेशेंट बंबई कैसा पहुंच सकता है साइन हॉस्पिटल
0: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया
1: बोलो
0: जाने का आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना फोन साइड पे करना जो भी आप बोल रहे हैं आपने हिंसा इस्तेमाल किया
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का
0: इधर उधर मत कीजिए
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना डॉक्टर किस लिए होता है भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया
0: गुंडे हो आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर ये तो साफ कर दीजिए आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको
1: आप गुंडे कैसे बन सकते हो सीधा जवाब देगा
0: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे
1: जान बचाने आपने
0: जो आपने जो
1: किया है मेरे को
0: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है आप नहीं कर सकते आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो आप कैसे कर सकते हैं ये सब अगर किसी ने बेड नहीं दिया ये नहीं दिया वो नहीं दिया अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया
1: कुछ नहीं किया है
0: आप पुलिस के पास जा सकते हो आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो आप किसी के भी पास जा सकते हो आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो आप आज कैसे उठा सकते हो आप नागरिक
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते जो अगर हम फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ डिलीवरी भी हो गया मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को हमारे CMO ने
0: मतलब
1: मैडम
0: उसके
1: साथ बात
0: तो रमेश जी
1: मामला कैसा सोल्व हो गया
0: तो,
1: और
0: तो
1: ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखड़ा रहे थे
0: रमेश जी
1: शर्मिंदा दोनों डॉक्टर
0: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना कोई डिसीजन ले रहा था
0: तो फिर आप ये सुन रहे
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग
0: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो NDTV पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला आगे सर ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था ये सब बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे
0: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड ये सब उसके पीछे मत छुपिए आप दलित कार्ड ये कार्ड वो कार्ड उसमें
1: नहीं नहीं हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर
0: नहीं
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे हम पब्लिक
0: हम मूर्ख नहीं है
1: हमको चुन के
0: दिया
1: डॉक्टर ने चुन के नहीं
0: दिया आपको नहीं जाने देंगे
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर
0: आपको
1: सर
0: सवाल सुनिए
1: चुन के दिया
0: सवाल सुनिए
1: लिए लड़ेंगे ना
0: रमेश
1: और डॉक्टर का तो हम सम्मान करते कि कोरोना के सीजन में कोरोना
0: का जो सम्मान है
1: बहुत बड़ा काम किया है

0: अलग किया
1: और उसका अलग किया, नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
0: हमसे बात नहीं कर रही थी
1: ये
0: वो
1: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल
0: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया, फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
1: रमेश जी
0: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन,
1: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
0: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
1: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
0: हमारे भी
1: आपको
0: वहां एक,
1: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
0: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया, आप
1: सर ये वीडियो तो देखिए,
0: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
1: सर, आप
0: जो हमको
1: काम करते हैं
0: बात करने
1: आपका काम है सर,
0: हम आते ही नहीं, अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर,
1: तो आपके पास
0: फोन
1: उठा था,
0: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो
1: हमको
0: जरूरत ही नहीं पड़ता था।
1: अफसोस बिल्कुल नहीं है, ये हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है, क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
0: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
1: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड,
0: नहीं फर्क पड़ता है, मेरी बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
1: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो,
0: अभी मारूंगा,
1: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
0: मैंने किया है,
1: आप कुछ
0: एक दो
1: कुछ
0: जान बचे
1: पढ़ रहे
0: हैं, मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए हैं, हम SSC पास है
1: सर, ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
0: हमारे वजह से दो जान बच गई है
1: निकलने का, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
0: और उसके माँ की जान बच गई है।
1: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे NDTV, आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
0: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
1: वो जो गुंडे हैं, ये विजुअल देखिए NDTV पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
0: तो सर आंखों में आंसू है,
1: जो टीवी और
0: जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
1: क्या आगे जाके
0: आदमी नहीं
1: करेंगे आप, आगे जाके
0: नहीं था
1: ये सब छोड़िए,
0: हमारे CM
1: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो, अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आपको गुंडा आ जाएगा।
2: Maharashtra government has taken note of NDTV's coverage on the assault on a female doctor by the Shiv Sena co-operator Ramesh Bhatre. Shiv Sena MP Shrikant Shinde has also condemned the assault, saying such behavior is unacceptable, confirming that a police case has been registered and assured that strict action will be taken. Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad, in fact, has defended the co-operator and said doctors are just after their salaries. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray has targeted the Mahayuti government, questioning whether Chief Minister Devendra Fadnavis will tolerate Gundagiri, is what he said, of an ally, and demanded action against the co-operator. Congress has also slammed the Mahayuti government over the incident and demanded strict action.
3: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करें।

0: आएंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी, बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए, जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाएगी।
1: हम लोग ने इसमें टीवी पे देखा है, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे क्या बात हुआ है, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है और हमारे साहब उसका एक्शन ले लें। वह सो हुआ
2: पीडी वगैरह,
1: लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरीके निकले।
3: गुंडागर्दी को पार्टी नहीं होती, रंग नहीं होता, जात नहीं होती, ना कोई विषय में गुंडा कोई भी पार्टी का होने दो, किसी बड़े नेता का भाई होने दो। आप मुझे आज भी याद है, सन्माननीय सुधाकर राव नाईक जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों में ऐसा जेल में ठूस दिया, भाई ठाकुर याद आते होंगे ना आपको। तो मैं समझता हूँ कि गुंडे को कौन सी पार्टी है, उसको पार्टी में सदस्य बनना, इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होती। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता होगा तो कानून अपना काम करेगा, उसको पार्टी कहाँ पे है।
4: The mother of the patient whom the corporator claimed to have protected has also defended him.
5: 6 बजे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, पाव पड़ रहे डॉक्टर के पास, अब वो भी लेडीज ही है ना, वो लेडीज के ऊपर लेडीज जान नहीं बचा सकती तो फिर क्या, वो डॉक्टर हम लोग भगवान मानते हैं, मैं बोलती भी हूँ उनको।
6: लेकिन जिस तरीके से दादा के कार्यकर्ता आते हैं, दादा खुद आते हैं, एक तरीके से हाथापाई होती है, वो कितना सही लगता है आपको?
5: सही नहीं है, गलत नहीं, सही भी नहीं है, वो लोग ने बहुत दादा के ऊपर गलत किया है, इसीलिए दादा ने बच्चा समझ के तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे, बच्ची के जान जाएंगे, इसीलिए दादा ने उसको ऐसा मारा है, नहीं तो कुछ भी नहीं, इतना वो लोग ने बहुत लंबा खींच के लगाया है।
4: The Federation of All India Medical Association has expressed its strongest condemnation of the brutal assault on doctors, nurses and healthcare workers at the KDMC Shastri Nagar Hospital in Maharashtra.
7: We are receiving complaints from Maharashtra and various other states of the country that there is no security. The security guards who works in a hospital are merely retired officials of paramilitary forces who are just making sure that the cars are parked in a right way. Whenever something like this happens, there is no security. And when some politicians like this, some corporator who is on the one of the topmost post and does something like this, then FIR is not done, police does not take action. And the entire matter, if the media would have not raised this issue, this matter would have gone in silent and nothing must have been done. And even right now, I was just hearing the arrogance and the goonism that is still there in this person. And the way he was speaking, that whatever he has done is correct. And he still believes that he is right in some way or the other.
4: Relentless rains for the last 48 hours now has killed around 13 people in a single day. Palghar bears the brunt with an 8th red alert in a row in Maharashtra. The Surya River has breached its banks at Maswan, submerging the Palghar-Manar highway. Traffic was halted and authorities remained on high alert along the riverbank. Amid the chaos, a moment of courage from Kalyan as well. Police Inspector Pankaj Giri, wading through shoulder-deep flood waters, rescued a 4-year-old and his family. But Ratnagiri had a tragedy. A landslide buried a home, killing father, son, Shantaram and Satish Shelar. The NDRF pulled out 73-year-old Kalpana Shelar alive. And in Jalgaon, there was heartbreaking scenes that were witnessed. 3 teenage boys drowned in a flood quarry. One slipped in. His 2 friends jumped in to save him. None of them made it out. Here's a look at a report filed by my colleague Tejshree.
8: Well, devastating pictures emerging from Trambakeshwar, where the entire area has been submerged in water, and it is in fact very difficult to walk in this area from where we are reporting right now. This in fact is one of the laundry shops, and the water has started entering the shops, the houses of the people who are staying over here, and the entire area has been completely flooded with water. NDTV has reached on ground zero and we'll be showing you the pictures actually, so as to how the water is completely affected the day-to-day lives of the people. In the visuals, you can see that this used to be a laundry shop. Here in the pictures as well, you can see that there are these cupboards of the shops and how they are completely submerged in the water. And this is not for the first time that the people are witnessing this situation. But due to extreme rainfall, due to extreme downpour, the situation remains to be very critical in this entire area. And in the visuals as well, Ashokji, if you can pan the camera and show the visuals this side, so as to how the people are compelled actually to stay inside this area. कैसे देख रहे हैं सिचुएशन को? आपके पूरे दुकान में पानी भर गया है फिलहाल इस वक्त, प्रवीण?
2: ये तो 10-12 साल से यही हो रहा है। हाँ। जो पहले पीडब्ल्यूडी के इसमें आता था, ये 3 किलोमीटर त्रंबक से रेडिएशन, लेकिन अब भी जो हद बड़ी है तो वो त्रंबक नगर परिषद के अधीन है, लेकिन अभी ये ना पीडब्ल्यूडी ने कुछ किया है। 12 साल से ये पानी हर साल हमारे लॉन्ड्री में आता है।
8: अभी इस बार जो है रेड अलर्ट इशू किया गया है, कहा गया है कि बादल भी फट सकते हैं, तो क्या इस कारण से और ज्यादा स्थिति खराब है? हम देख सकते हैं कि पूरे दुकान के अंदर आपके पानी चला गया है।
2: हाँ, वो हर साल का है, ये 12 साल से यही हो रहा है, और अभी तो मतलब उन्होंने रेड अलर्ट दिया हुआ है, इतना तो बारिश हुआ नहीं है अभी तक।
8: और बारिश होगी तो कितना समस्या होगी?
2: हाँ, तो ये पूरे लॉन्ड्री में पानी भर जाता है, पूरी मशीनरी खराब हो जाती है हमारी,
9: बहुत समस्या है। अभी तो कुछ भी बारिश नहीं है, अभी जब ज्यादा बारिश आएगी ना तभी तरह आना जाना भी नहीं रहेगा
8: पूरा। अभी हम चल के जब आ रहे थे तब मिट्टी भी नीचे धस रही थी, काफी खतरनाक है।
9: पूरा रास्ते पे पानी आया, पूरा रूम में पानी, जो लोग रहते हैं ना लेबर लोग, उनके रूम में पूरा पानी गए,
8: सबके घर में भी पानी,
9: सब में घर।
8: सी यू सी व्यूअर्स, द सिचुएशन एक्चुअली इज क्वाइट क्रिटिकल ओवर हियर, एज दे वर नैरेटिंग दैट नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो दैट दे हैव बीन विटनेसिंग दिस सिचुएशन, बट दे आर ऑल्सो इन फैक्ट वरीड दैट व्हाट विल हैपन इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी लाइक दिस, एंड इन द गिवन टाइम वी सी दैट द डाउनपोर कंटिन्यूज एंड ऑल्सो द रेड अलर्ट, द मैनर इन विच the situation is unfolding, that is also quite critical and quite concerning.
4: Well, disaster has struck Wayanad once again, this time a deadly tunnel mudslide killing 5 people. However, Keralam cabinet minister has called it a man-made tragedy as well. Keralam minister Siddiqui has leveled a grave charge, stating that the district collector was warned prior and that the Konkan Railways took no action. Reports state that on the 20th of June, the district collector Wayanad wrote a letter stating that work at the twin tunnel project near Meenakshi area of Keralam's Wayanad district should stop temporarily until the soil accumulated post-tunneling is removed from the area. Keralam chief minister has also taken stock of the situation and doubled down on his minister's stance. Satishan said that the mud removal request was in place and that contractors didn't abide by orders.
10: Wayanad landslide is a very unfortunate, it has happened. Now the government is going to study in detail, a techno-legal study we are going to study, and we will go for the investigation also. Then second thing is that we will check the construction company. There are some conditions from the Environment Department of the central government, whether they are obeying these conditions are no or not. The PWD minister directed the PWD secretary, and PWD secretary and other engineers went to this place and they checked. They also warned the concerned parties, contractors, to the possibilities for a disaster.
11: Yesterday we were able to retrieve 3 bodies and 9 people have been shifted to the hospital. All of them are doing very well, they are stable. 1 person, 2-3 persons are in ICU, and they are given very good care. So today the focus will be to find these 5 missing persons. So we are continuing the search and rescue operation. We have divided into 4 zones, and equipments are there, cadaver dogs are there with us. So we have mobilized everything, and we will be focusing on that. And we are trying to reinstate the transportation also. So once that is done, we will see further what actions have to be done.
12: Traffic through the blocked roads due to the mudslide completely cleared by 4 a.m. today morning, early morning. And it will help the all activities, including the transport, the vehicle, the equipment for the searching, and all will be boosted in a very good manner.
13: NDTV continues to be on ground. We are right now in Wayanad's Mepadi region where the landslide has struck, and five members so far have died.

0: the life of a pregnant woman. He says he respects women and maintains that while he snatched a phone from a doctor's hand during the altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. But of course, the visuals tell you a different story. This comes after a video of him went viral of assaulting doctors and nurses in the hospital. NDTV's managing editor Shiv Arora has spoken with the corporator in question. Here's an excerpt.
1: जो वीडियो जो सामने आया है जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है सीधा सवाल है रमेश जी ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
2: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
1: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
2: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
1: सर वीडियो
2: फोन कान से हटाया फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो
1: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
2: का फोन के ऊपर मारे फोन रखो
1: आपको आपको किसने
2: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: कभी नहीं किसी पे भी हाथ
2: हमारा हम शिवसैनिक है लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते
1: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
2: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
1: वैभव पे आपने हाथ उठाया है
2: लेकिन वो जो
1: गुंडे आपके
2: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
1: और उसका अलग नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
2: हमसे बात नहीं कर रही थी
1: ये
2: वो
1: वीडियो पे आ रहा है ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी आप झूठ नहीं, नहीं बोल सकते हैं आप झूठ नहीं बोल
2: गले पे नहीं मारा है कान में फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से
1: रमेश जी
2: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
1: मेरा सवाल सुनिए चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा आप फोन हटा रहे थे आप एक कॉर्पोरेटर हो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का आपको किसने हक दिया
2: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो
1: हाथ उठाने का हक बालासाहेब ठाकरे ने दिया आपको
2: वहां एक
1: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
2: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया आप
1: सर ये वीडियो तो देखिए
2: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या देखने दो ना पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
1: सर आप
2: अगर हमको
1: काम करते हैं
2: बात करने
1: आपका काम है सर
2: हम आते ही नहीं अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर
1: तो आपके पास कोई अफसोस नहीं
2: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हमको आने का जरूरत ही नहीं पड़ता था
1: अफसोस बिल्कुल नहीं है ये हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है रिग्रेट नहीं है क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे क्या आप माफी मांगेंगे उनसे FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है
2: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
1: सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अंडर द लॉ देन वायलेंस हैज बीन यूज्ड
2: नहीं फर्क पड़ता है बात तो सुनो वो लेडी डॉक्टर थी ना सर लेडी डॉक्टर थी ना वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है एक लड़की डॉक्टर बनी है हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए
1: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो
2: अभी मारूंगा
1: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर
2: मैंने किया है
1: आप कुछ
2: एक दो जान बचे मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर हमारे दो जान बच गए हम एसएससी पास है
1: सर ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है
2: हमारे
1: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको
2: और उसके माँ की जान बच गई है
1: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है क्या आप माफी मांगेंगे एनडीटीवी आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो क्या आप माफी मांगेंगे उनसे
2: कार्यकर्ता थे सर वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे
1: वो जो गुंडे हैं, ये विजुअल

0: an ally and demanding action against the corporator.
1: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पे आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी, बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए, जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाए।
2: हम लोग ने इसमें टीवी पे देखा, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे क्या बात हुआ, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है और हमारे साहब उसका एक्शन ले लेंगे। वह सो हुआ लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरह तजुर्बा निकाले।
3: रमेश मात्रे का मैंने वीडियो कोई महिला डॉक्टर को मारते हुए नहीं देखा है, जहाँ मारपीट हो रही है वो दो जेंट्स में हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, मैं 40 साल से मेरा उन लोगों से संपर्क है, जिस तरह से हम सरकारी कर्मचारी हमारा पगार चालू है, पेशेंट आए जाए, पेशेंट मरे या उसके ट्रीटमेंट ना हो, ये सारी कर्मचारियों की मानसिकता मैंने आपको से देखी है। इसी वजह से एखादे पेशेंट की अवहेलना देखने के बाद में, उसकी गंभीर स्थिति देखने के बाद में किसी को गुस्सा आ सकता है, बट मैं उनका समर्थन करूँगा नहीं। शायद वो चाहते तो वो अलग मार्ग से करते थे, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल की परिस्थिति बदलना भी जरूरी है।
4: गुंडागर्दी को पार्टी नहीं होती, रंग नहीं होता, जात नहीं होती, ना कोई विषय में गुंडा कोई भी पार्टी का होने दो, किसी बड़े नेता का भाई होने दो। आप मुझे आज भी याद है, सन्माननीय सुधाकर राव नाइक जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों में ऐसा जेल में ठूस दिया, भाई ठाकुर याद आते होंगे ना आपको। तो मैं समझता हूँ कि गुंडे को कौन सी पार्टी है, उसको पार्टी में सदस्य बनना, इसमें कोई स्क्रूटिनी नहीं होती। तो कभी कभी कोई व्यक्ति गुंडागर्दी करता होगा तो कानून अपना काम करेगा, उसको पार्टी कहाँ पे है।
5: कई दिनों से बोल रहा हूँ कि जो पांचवी बहुमत बेईमानी से इनको मिला है उसकी मस्ती इन लोगों को आई है, और वो मस्ती के आधार पर इनको लगता है कि हम परमानेंट ये व्यवस्था में हैं, हम शासक हैं, और यही घमंड इनके ऊपर है। और इसलिए एक महिला डॉक्टर को और नर्सेज को मारने की तक इन लोगों ने कदम उठाया है, इसका हम निषेध करते हैं। और ये सावित्रीबाई फुले का महाराष्ट्र है, महिलाओं का सम्मान ये महाराष्ट्र का स्वाभिमान रहा, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी वही का किया है, पर ये तो मुगलों के जैसे ही आज इनका व्यवहार शुरू हो चुका है, और इसलिए इसका हम निषेध करते हैं और विधानसभा में ये सब्जेक्ट हम उठाएंगे और सरकार को कहेंगे त्वरित कार्रवाई की जाए।
6: शिंदे सेना के चाहे विधायक हों, नगर सेवक हों, इनको सत्ता का माज आ गया है, सत्ता के घमंड में चूर होकर चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो या अधिकारी हो, उनके साथ इसी तरह का ये बर्ताव कर रहे हैं। इनका आचरण बहुत ही घटिया होते जा रहा है, लोगों को न्याय देने के लिए काम करने के बजाय ये अधिकारी और डॉक्टर और डॉक्टरों जैसे लोगों के ऊपर इस तरह से पावर के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर इस तरह से हमला कर रहे हैं या धक्का मुक्की करते हैं या गाली गलौज करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है।
0: The mother of the patient whom the corporator claimed to have protected has defended the corporator.
7: छह बजे से हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे, पाव पड़ रहे डॉक्टर के पास। अब वो भी लेडीज ही है ना, वो लेडीज के ऊपर लेडीज जान नहीं बचा सकती तो फिर क्या, वो डॉक्टर हम लोग भगवान मानते हैं, मैं बोलती भी हूँ उनको।
8: लेकिन जिस तरीके से दादा के कार्यकर्ता आते हैं, दादा खुद आते हैं, एक तरीके से हाथापाई होती है, वो कितना सही लगता है आपको?
7: सही नहीं है, गलत नहीं, सही भी नहीं है। वो लोग ने बहुत दादा के ऊपर गलत किया है, इसीलिए दादा ने बच्चा समझ के, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे, बच्ची के जान जाएंगे, इसीलिए दादा ने उसको ऐसा मारा है, नहीं तो कुछ भी नहीं। इतना वो लोग ने बहुत लंबा खींच के लगाया है।
0: The Federation of All India Medical Association has expressed its strongest condemnation of the brutal assault on doctors, nurses and healthcare workers.
9: We are receiving complaints from Maharashtra and various other states of the country that there is no security. The security guards who works in

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों से सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
9: At NDTV Profits, every day is a new day, buzzing with news, information, analysis. A lot of it. That is why we separate the news that is urgent and important for you from what is not. News that influences outcomes across markets, policy, and the corridors of power. At 6 p.m., we turn our attention to the critical conversations that matter. I'm Vikram Oza, bringing you The Big Question, Monday to Thursday at 6 p.m.
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.
12: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
13: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
14: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव।
15: दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस।
16: व्हाट वी आर सिटिंग इनसाइड इज अ जोबी पावर्ड एयर टैक्सी।
17: योर फ्रेंड सेड ये ले ले, वी सेड मे बी नॉट।
18: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
19: Buy. Sell. Hold. Hold.
20: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet. Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
21: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
22: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों से सरसों।
23: दे से मॉर्निंग शोज द डे। मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स। बाय मिडडे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट। दैट्स व्हेन द राइट इनसाइट्स हेल्प्स यू रीथिंक द डे। ट्रेड्स, ट्रेंड्स, द मूव्स दैट मैटर। Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
20: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
24: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV. Jury, I have been a fan of NDTV for a long time.
25: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
26: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
27: It's also important that how they are reshaping the industries.
28: We've got a fantastic jury and we've left all decisions to the wisdom of the jury.
20: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business.

0: अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडीज डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया।
1: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे।
0: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
1: सर। वीडियो
0: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो।
1: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठा,
0: उसका फोन के ऊपर मारे, फोन रखो।
1: आपको आपको किसने
0: नहीं नहीं नहीं नहीं
1: भी कभी नहीं, किसी पे भी हाथ
0: हमारा, हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
1: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर, डॉक्टर
0: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
1: वैभव पे आपने हाथ उठाया है,
0: लेकिन वो जो
1: गुंडे आपके
0: फोन के ऊपर, फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया,
1: और उसका अलग किया, नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
0: हमसे बात नहीं कर रही थी
1: ये
0: वो।
1: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं, नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं, नहीं बोल
0: गले
1: सकते।
0: पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
1: रमेश जी,
0: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
1: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
0: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
1: हाथ उठाने का हक बालासाहेब हमारे
0: भी
1: आपको
0: वहां एक।
1: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
0: अन्याय के खिलाफ कुछ भी
1: नागरिक,
0: हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
1: सर ये वीडियो तो देखिए,
0: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
1: सर। आप
0: अगर हमको
1: काम करते हैं,
0: बात करने
1: आपका काम है सर,
0: हम आते ही नहीं। अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर।
1: तो आपके पास
0: फोन
1: उठा
0: था, अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ता था।
1: अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है। क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव, जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
0: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
1: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड,
0: नहीं फर्क पड़ता है। मेरी बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
1: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
0: अभी मारूंगा,
1: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
0: मैंने किया है, एक दो जान बचे
1: हैं,
0: हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए, हम SSC पास है
1: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
0: हमारे
1: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
0: और उसके माँ की जान बच गई है।
1: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? NDTV आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
0: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ता थे
1: वो जो गुंडे हैं, ये विजुअल देखिए NDTV पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर।
0: तो सर उसकी आंखों में आंसू है,
1: जो टीवी और पर वो, है, देख
0: जो, जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
1: क्या आगे जाके
0: आदमी नहीं
1: करेंगे आप? आगे जाके
0: काम उसका नहीं था,
1: ये सब छोड़िए,
0: हमारे CM ने
1: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो, अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आप गुंडा आ जाएगा।
2: All right, and the police have said that Ramesh Mahatre will also be arrested soon and he will be held. 3 people have already been arrested in this case. With that, we'll slip into a short break. More news and updates on the other side. Stay with us.

0: after which post outrage and anger is when the police decided to register an FIR against 5 individuals, and 3 people have been arrested in connection to the case, and those 3 are aides of Mathre. Mathre is at large. I did speak to the police officials concerned, and they say that he will be arrested. The process has begun and we are on the hunt for him. But we spoke to opposition leaders. I spoke to the family members as well just a while ago. All of them echo the sentiment that Mathre is being protected by the ruling party, and that he may perhaps not be arrested, and if he is arrested, he will be granted bail immediately, or there is a possibility that he may go for an anticipatory bail also. So those are the fears as far as the family members are concerned. They did tell us about the ordeal faced by the victims here, both the male as well as the female doctors, and what exactly transpired 2 days back. There is a lot of outrage. This is the hospital where this incident happened. In fact, a lot of procedures here lot of the non-emergency procedures here really have been halted. Only emergency procedures are going on. Silent protest happening. There were multiple meetings that happened inside since morning between the members of the medical fraternity as well as with the politicians. But really, we'll have to see what happens in the next few hours, because the big question really in the minds of everybody here is, when will Ramesh Mathre be arrested?
1: All right, Radhika, thanks so much for joining us. Radhika, they're reporting from outside that hospital. As she said, you know, the hospital right now, the doctors are protesting. They're very angry over this entire issue, and only essential operations are taking place at the hospital. So let's take you through this development. This incident, as we said, took place a day before yesterday, and now 3 people, after the outrage, after that video went viral, NDTV also raising it, finally then 3 people arrested for their role in the assault on the doctors, allegedly by the Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre. And this after NDTV grilled the Sena co-operator who assaulted the woman doctor and 2 other physicians as well as nurses there in the government hospital in Dombivli. The Mumbai police finally in action today and assured that they will also arrest the co-operator as well, Ramesh Mathre. However, 3 people arrested. No action yet against the co-operator. So where really is he is the question. While talking to NDTV this morning, Ramesh Mathre denied assaulting any woman doctor. He claims he intervened to save the life of a pregnant woman, and he says that he respects women and maintains that while he snatched a phone from the doctor's hand during this altercation, he did not physically assault any member of the medical staff. But as you can see on your screens there, there is that video that has gone viral and caused so much outrage of him and his aides assaulting doctors and nurses in the hospital.
2: आम्ही गुन्ह्यात गुन्ह्याच्या अनुषंगाने जे काय आम्हाला स्टेप घ्यायचे आहे ते आम्ही स्टेप आता घेतोय, आणि त्यापर्यंत पुढचे कारपर्यंत 3 आरोपी अटक केलेले आहेत.
3: मुख्य आमचा प्रश्न आहे, नगरसेवक रमेश मात्रेंना अटक का नाही?
2: आरोपी शोधतोय.
1: All right, as we mentioned, we did have Ramesh Mathre on our channel this morning speaking to Shiv Arora, and listen in to what he had to say, how he defended himself and actually claimed that he did not assault the lady doctor.
4: ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
5: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया.
4: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे.
5: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
4: सर. वीडियो
5: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो.
4: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
5: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो.
4: आपको आपको किसने
5: नहीं नहीं नहीं नहीं कभी नहीं,
4: किसी पे भी हाथ
5: उठा? हमारा हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते.
4: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
5: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
4: हैं पे आपने हाथ उठाया होगा,
5: लेकिन वो जो
4: गुंडे आपके
5: फोन के ऊपर, फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया. कौन उसका अलग किया,
4: नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
5: हमसे बात नहीं कर रही थी
4: ये
5: वो?
4: वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल
5: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
4: रमेश जी
5: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
4: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का, आपको किसने हक दिया?
5: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
4: बालासाहेब
5: हमारी भी
4: आपको
5: वहां एक
4: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
5: अन्याय के खिलाफ कुछ भी नागरिक हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
4: ये वीडियो तो देखिए
5: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
4: सर?
5: अगर हमको
4: काम करते हैं,
5: बात करने
4: आपका काम है सर,
5: हम आते ही नहीं, अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर,
4: तो आपके पास
5: फोन उठा था, अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो हम जरूरत ही नहीं पड़ता था।
4: अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है। क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है।
5: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
4: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड,
5: नहीं फर्क पड़ता है। मेरी बात तो सुनो, वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए।
4: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो।
5: अभी मारूंगा,
4: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
5: मैंने किया है,
4: आप कुछ
5: एक दो
4: कुछ
5: जान बचे
4: से पढ़ रहे हैं,
5: मैं हमारे वजह से दो जान बच गई है सर, हमारे दो जान बच गए, हम SSC पास है
4: सर। ये तो साफ नजर आ रहा है कि आपके पास एक नैरेटिव मिल गया है,
5: हमारे
4: पास एक नैरेटिव मिल गया है निकलने का। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपको,
5: और उसके माँ की जान बच गई है।
4: डॉक्टर श्रुति और डॉक्टर वैभव और दो नर्सेस जो हैं, जो जिसको आपने मारा है और आपके गुंडों ने मारा है, क्या आप माफी मांगेंगे? NDTV आप नेशनल चैनल पर हो ना लाइव हो, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे?
5: कार्यकर्ता थे सर, वो कार्यकर्ता थे हमारे पार्टी के, कार्यकर्ते थे
4: वो जो गुंडे हैं, ये विजुअल देखिए NDTV पर, ये रो रहे नर्सेस, ये नर्सेस और डॉक्टर्स रो रहे, उनकी आंखों में आंसू है सर, वो स्ट्राइक पर है अभी क्योंकि आपने हाथ उठाया उन पर,
5: तो सर उसके आंखों में आंसू है,
4: जो टीवी और पर
5: वो जो प्रेग्नेंट महिला थी वो क्या जानवर थी क्या?
4: क्या आगे जाके
5: आदमी नहीं
4: करेंगे आप? आगे
5: जाके नहीं था
4: ये सब छोड़िए,
5: हमारे CMO ने
4: ये सब छोड़िए, आप जननायक नहीं हो सर, हाथ उठा के आप जननायक नहीं बनते हो, आप गुंडे ही हो, अगर आप हाथ उठाएंगे तो आप गुंडे ही हो, आप गुंडा आ जाएगा।
1: All right, so that was Ramesh Mhatre on NDTV this morning. The police have still not been able to find him, but the entire incident, this assault on doctors, has caused a lot of anger in the doctors' fraternity. NDTV's Radhika Ramaswamy also spoke to the family of the assaulted doctors. Listen in.
0: I'm joined by mother and father of Shrishti, who was assaulted by the corporator and his aides. Thank you, sir and ma'am, for joining us. I know that your daughter is not in a position to come here, right? How is she now?
6: She is suffering.
0: कुछ इंजरीज है क्या है? मतलब ये परसों हुआ था ना?
6: ये परसों हुआ था, लेकिन इंजरीज से ज़्यादा मैं कह सकती हूँ उसके ऊपर जो मानसिक आघात हुआ है ना, उसमें से वो उभर नहीं पा रही है अभी, और ये सब फेस नहीं कर सकते, इसलिए दैट्स व्हाई शी इज नॉट हियर।
0: शी इज नॉट हियर एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग हर टुडे फॉर जस्ट।
6: या
0: सर, क्या कहना चाहेंगे, उस दिन क्या हुआ था और उसके बाद जो एक्शन अभी तक हो रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
7: एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था, जो डॉक्टर सृष्टि ड्यूटी पे थे, डॉक्टर वैभव ड्यूटी पे था, सिस्टर लोग थे, और एक पेशेंट आया था, पेशेंट को उन्होंने कॉपरेट भी किया था, पेशेंट को रेफ़र करने के लिए भी कहा था, लेकिन वो पेशेंट ने कॉरपोरेटर को फ़ोन किया, वो आके बिना पूछे बिना इंक्वायरी डॉक्टर लोगों को, सिस्टर लोगों को, मौसी लोगों को मारने लगा। एक रजिस्टर लेके उसने डॉक्टर के सर पे मारा, उनके साथ में जो गुंडे थे उन्होंने डॉक्टर पे हमला किया, नर्स पे हमला किया, डॉक्टर सृष्टि को भी मारा, एकदम गलत गंदली तरीके से गाली वाली गाली गलौच किया, उसके वो डिप्रेशन में गई है, उसके दिल में डर पैदा हुआ है कि भाई ये लोग आके हम कभी भी मार सकते हैं, हमको कुछ भी कर सकते हैं।
0: हमारे मैनेजिंग एडिटर ने भी उनसे बात की कल, उन्होंने कहा कि फीमेल डॉक्टर का असॉल्ट हुआ ही नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे थे।
6: कौन बोल रहा है ऐसे?
0: ये मात्रे,
6: और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है,
0: एग्जैक्टली
6: वो क्या है, वो
0: कॉन्फिडेंस
6: है ना, जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की
0: वही हमने पूछा,
6: जो पत्रकार है वहाँ पे उन्होंने पूछना चाहिए कि जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है
0: वो कि एंगल गलत है, ऐसा
6: ऐसे कैसे गलत है, जो आप मार रहे हैं उसके ऊपर
0: करेक्ट
6: टेबल बीच में नहीं आता तो उसके ऊपर अटैक करने वाले थे वो लोग।
0: योर मैसेज टू द गवर्नमेंट, टू द पुलिस, यू नो एज फार एज वॉट इज हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, व्हाट्स योर मैसेज, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल द स्टेट गवर्नमेंट?
6: आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा हो, कोई भी डॉक्टर जो ड्यूटी पे है, जो भी मेडिकल स्टाफ है, उनके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन कड़क से कड़क कार्रवाई, जो भी अभी इंसिडेंस हुए उसके ऊपर करेगा तो एक अच्छा मैसेज जाएगा सोसाइटी में।
7: प्लीज़ डॉक्टर लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, गवर्नमेंट ने देना चाहिए, सिक्योरिटी देना चाहिए, खास करके महिला डॉक्टर, सिस्टर्स, मौसी लोग, ये लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जिसके वजह से उनके दिल में जो डर है वो निकल जाए, और कभी भी किसी भी हमला हो तो उसके ऊपर पुलिस तुरंत एक्शन ले और उसको अंदर डाले कि उसको कुछ भी करने से वो डरे, ये भूमिका पुलिस शासन ने लेना चाहिए।
0: थैंक यू टू बोथ ऑफ यू फॉर स्पीकिंग टू अस, थैंक यू।
1: All right, so there you heard the family. Now the Maharashtra government has taken note of NDTV's coverage of the assault on the woman doctor by a Shiv Sena corporator, Ramesh Mahatre. Three people, as we said, have been arrested. Shiv Sena MP Shrikant Shinde condemned the assault, saying such behavior is unacceptable, confirming that a police case has been registered, and he assured that strict action will be taken. Meanwhile, Shiv Sena MLA Sanjay Gaikwad defended the corporator and said that doctors are just after their salaries. Shiv Sena UBT MLA Aditya Thackeray targeted the Mahayuti government, questioning whether Chief Minister Devendra Fadnavis will tolerate such gundagardi of an ally, and demanding action against the corporator. Congress too slammed the Mahayuti government over this incident, demanding strict action be taken.
0: Mr. Pawar, what exactly happened inside? You met with some of the victims, I believe, some of the doctors as well. If you can take us through what the demands of your party are.
8: No, we met some of the victims as well as their parents also. Vaibhav, you know, if you would have seen the video, this Ramesh Mahatre is a corporator who is in power in Kalyan Dombivli Mahanagar Palika, and he is from a party which is also in power in Maharashtra state, that is Eknath Shinde Saab's party. What has happened is, 2 days back he had come to this government hospital, and he literally, you know, hit all the nurses as well as doctors in this particular hospital for no reason, and one of the person is critical. When I tried to speak to that doctor, he's so scared that he is not able to speak also. Now, after talking to all the nurses and all, what they are saying, we want protection. Plus, this Ramesh Mahatre has a criminal background.
9: लोकशाही प्रक्रिया में जिस तरह से अगर हम लोग काम करते हैं, तो काम करते समय अगर किसी से दिरंगाई होती है तो उसके लिए अपीलिंग अथॉरिटी है, कंप्लेनेंट अथॉरिटी है, उनके पास हम लोग जाएंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए मांग करेंगे तो सही रहेगा। हम अगर मारपीट पर आएंगे तो ये बात ठीक नहीं है। जैसा कि लोकशाही प्रक्रिया में हम लोग जबकि पॉलिटिकल वर्कर है तो हम लोगों के लिए बहुत सारी आचार संहिता रहती है, जिसका पालन करना ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। डॉक्टर्स को हम लोग अपील करेंगे, एक घटना घटी है तो उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी चाहिए वो तो कार्रवाई होगी, बाकी अभी तो बारिश चल रही है, बारिश इतनी चल रही है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत अभी हमें है, समाज को है, तो इसके लिए ज़रा थोड़ी सी धीरज रखिए, जो गलत है उसके लिए जो कुछ कार्रवाई होगी हो जाएगी।
10: हम लोग ने इसमें टीवी पे देखा है, अभी साहब हमारे उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे, क्या बात हुआ, किस तरह से ऐसा किया और क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, और हमारे साहब उसका एक्शन ले लेंगे। बात तो हुआ, लेकिन उसका भी एकनाथ शिंदे साहब कोई ना कोई तरीके से निकले।
11: रमेश मात्रे का मैंने वीडियो कोई महिला डॉक्टर को मारते हुए नहीं देखा है। जहाँ मारपीट हो रही है वो दो जेंट्स में हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितने भी सिविल हॉस्पिटल है, मैं 40 साल से मेरा उन लोगों से संपर्क है। जिस तरह से हम सरकारी कर्मचारी, हमारा पगार चालू है, पेशेंट आए जाए, पेशेंट मरे या उसके

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: सरसों थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों, थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।

0: clarification by the Shiv Sena leader. It comes after a video of him went viral of assaulting doctor and nurses in the hospital.
1: आम्ही गुन्ह्यात गुन्ह्याच्या अनुषंगाने जे काय आम्हाला स्टेप घ्यायचे आहे ते आम्ही स्टेप आता घेतोय आणि त्यापर्यंत पुढची कारवाईपर्यंत तीन आरोपी अटक केलेले आहेत.
2: मुख्य आमचा प्रश्न आहे, नगरसेवक रमेश मात्रेंना अटक का नाही?
1: आरोपी शोधतोय.
3: मैंने तो ये टीवी पे देखा था थोड़ा सा, लेकिन किसी भी चीज पे इतना पैनिक होना या किसी के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, ये गलत मैसेज जाता है. पेशेंसली काम लेना चाहिए, कभी कभी डिस्कशन करना चाहिए कि काम कैसे होना चाहिए. उसके ऊपर निर्देश है, वहाँ पे काफ़ी नियम है, उसके ऊपर उसको यूटिलाइज करो. लेकिन एक महिला के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है.
0: And meanwhile, our managing editor Shiv Arur has grilled this cooperator, the Shiv Sena cooperator, who remains defiant about his actions. Take a look.
4: ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो एनडीटीवी ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
5: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया.
4: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे.
5: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
4: सर. वीडियो
5: फोन कान से हटाया, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो.
4: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
5: का? फोन के ऊपर मारे, फोन रखो.
4: आपको किसने
5: हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते.
4: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
5: वो जो बता रहे हैं, वो जो बता रहे
4: वैभव पे आपने हाथ रहा होगा.
5: लेकिन वो जो
4: गुंडे
5: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया.
4: और उसका अलग नहीं किया आपने, उसके हाथ और गले
5: हमसे बात नहीं कर रही थी.
4: ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी. आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आप झूठ नहीं बोल
5: सकते. गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था. फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से.
4: रमेश जी
5: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन.
4: मेरा सवाल सुनिए. चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे. आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
5: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहां भी अन्याय हो वह आप अपना तरीका दिखा सकते हो.
4: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
5: हमारे भी
4: आपको
5: वहां एक.
4: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
5: अन्याय के खिलाफ कुछ भी
4: नागरिक.
5: हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया. आप
4: सर ये वीडियो तो देखिए.
5: क्या वो डॉक्टर पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था
4: सर. आप
5: अगर हमको
4: काम करते हैं,
5: बात करने
4: आपका काम है सर.
5: हम आते ही नहीं, अगर हमारा फोन उठा दे तो हम आते ही नहीं सर उधर.
4: तो आपके पास
5: फोन
4: उठा था,
5: अगर हमारा फोन लेते हैं डॉक्टर तो
4: हमको
5: जरूरत ही नहीं पड़ता था.
4: अफसोस बिल्कुल नहीं है, हिंसा इस्तेमाल करने का कोई अफसोस ही नहीं है, रिग्रेट नहीं है. क्या आप माफी मांगेंगे डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर वैभव जो दो नर्सेस थे वहां पे, क्या आप माफी मांगेंगे उनसे? FIR दर्ज हुई है आपके खिलाफ, आपके गुंडों के खिलाफ भी दर्ज हुई है.
5: भी दलित थी और मेरे को सर सुनिए
4: सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है.
5: वो भी दलित,
4: उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. अंडर द लॉ वायलेंस हैज बीन यूज्ड.
5: नहीं फर्क पड़ता है, मेरी बात तो सुनो. वो लेडी डॉक्टर थी ना सर, लेडी डॉक्टर थी ना, वो भी दलित समाज है. और मेरे को अभिमान है कि दलित समाज की लेडी डॉक्टर बनती है, एक लड़की डॉक्टर बनी है, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं. उसके लिए मेरे को बहुत गर्व महसूस हो रहा है उसके लिए.
4: लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है और आप ये दलित कार्ड प्ले कर रहे हो.
5: अभी मारूंगा.
4: आप कुछ कागज से पढ़ रहे हैं क्या सर?
5: मैंने किया है
4: कुछ,
5: एक दो जान बचे
4: पढ़ रहे
5: हैं. हमारे वजह से दो जान बच गई है सर.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
11: सबका राजा आर्थर मसाला।
12: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
13: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
12: The show that sets the prime time agenda.
13: We'll be deep diving into this topic to tell

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: से वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।

0: सेहत मंद हर रोज।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
4: सरसों से सरसों।
5: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस। बाय नाउ सेल। होल्ड होल्ड। बाय सेल
6: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.
7: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
8: These kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
9: I think it's heartening to see talent that there is in. Across India Inc.
10: We should be awarding companies and individuals who have focused not only on growth.
11: News coming in from Tamil Nadu at this moment. Chief Minister Vijay makes a surprise visit to a government children's hospital at Chennai. In fact, authorities call it a surprise inspection after there were some reports or social media video where a woman, in fact, alleged that there was bribery and unhygienic conditions. The chief minister decided to check that himself. And when he went there, it turned, into a massive moment for his fans as well, where the chief minister is taking stock of the situation himself. All right, we'll leave it there. Thank you so much for joining us on this edition of Nationwide. I'll be back tomorrow.
12: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
1: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी। ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
13: सरसों
14: से सरसों। We are over, Jimmy.
15: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
16: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
17: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
18: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
10: देश का टायर जेके टायर।
7: वी आर ओवर जिमी।
8: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
11: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
12: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
13: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
14: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।

0: प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे।
1: पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां पर कोई ऐसे चोरी का एक मामला प्रकाश एक संगठन के द्वारा भी कहा गया था, वहां पर एक कमेटी गठित की गई। उसके बाद जब पूरी जांच हुई तो उस जांच में उसको दोषी पाया गया और उसके खिलाफ जो है उसको निलंबन की प्रक्रिया की गई।
2: All right, joining us live from Dehradun is my colleague Kishore Rawat. Kishore, ये बताइए कि action तो हो गया है, पर चोरी कितने की हुई है, किस तरह की हुई है, किस चीज की हुई है?
3: बिल्कुल, ये सवाल उठता है कि चोरी हुई है तो कितने की हुई है। जो चढ़ावा चढ़ाया था आम लोगों ने, जो अपनी मन्नतें पूरी करने पे चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसका कितना हिस्सा चुराया है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है। जो गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में 3 सदस्य कमेटी है वो कल बद्रीनाथ पहुँचेगी और वो इस बारे में जाँच करेगी। इससे पहले जो BKTC ने 4 सदस्य कमेटी का गठन किया था, उन्होंने अपनी जो प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है उसमें यही बताया है कि जो प्रमोद नौटियाल है, जो निजी सहायक है, वो CCTV फुटेज में मोबाइल फ़ोन के साथ कुछ हाथ में लेते हुए बाहर निकला है। जब उसे कारण बताओ नोटिस दिया और पूछा कि आपके हाथ में मोबाइल के अलावा क्या था, वो जवाब नहीं दे पाया। कई बार पूछने पर जवाब नहीं दे पाया तो उसके बाद उसको निलंबित किया गया है और जोशीमठ जो बद्रीनाथ जो BKTC का ऑफिस है उसमें अटैच किया है। इसके अलावा बद्रीनाथ थाने में ही उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, BNS की धारा 306 और 316 के तहत दर्ज किया है। अब जो कमेटी है, यानी जो उत्तराखंड सरकार ने जो कमेटी गठन की है 3 सदस्य, जिसमें गढ़वाल कमिश्नर है और 2 IAS अधिकारी और है, वो बद्रीनाथ में उन 32 CCTV कैमरों से खंगालेंगे कि आखिर जो पैसा चोरी किया गया, और उससे पूछताछ भी की जाएगी क्योंकि अब मुकदमा दर्ज हो चुका है तो पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करेगी और ये कमेटी है ये अपने तरीके से पूछताछ करेगी और 15 दिन के अंदर इसको अपनी जाँच रिपोर्ट देनी है। सवाल यही है कि क्या सिर्फ इसमें प्रमोद नौटियाल ही सम्मिलित है, इसके अलावा कोई और भी व्यक्ति है, या सिर्फ जो 9 से 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है, इसके अलावा अन्य जो वीडियोस है, जो CCTV कैमरेज लगाए गए उसमें और क्या देखने मिलेगा, और जो जांच कमेटी है इसकी जो जांच है सिर्फ प्रमोद नौटियाल तक रहती है, इसके अलावा अन्य जो वीडियोस क्लिपिंग है उस पर भी जाएगी।
2: ओके किशोर, थैंक्स वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बिकॉज़ इट्स टेरिबल इफ दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू। 15 डेज दैट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड, नथिंग लेस देन फुल अकाउंटेबिलिटी एंड फुल ट्रांसपेरेंसी इज नीडेड इन दिस केस। All right, the other big story we are talking about is Punjab's dark and turbulent insurgency years, which are back in the spotlight after the controversy over Diljit Dosanjh's films Satluj. This film, which portrays the life and work of activist Jaswant Singh Khalra, has sparked a fresh debate over the events of that era. It was pulled down from OTT platform just 2 days after a quiet release. And now, of course, full-blown politics has started over it. The Akali Dal has announced that they are going to ensure the screening of this film across Punjab. Despite the fact that right now it has been pulled off, the Akali Dal is going to organize screenings. But what this film has also done is put the spotlight back on the legacy of super cop KPS Gill, because in the film, remember, he's hailed for ridding Punjab of insurgency, of bringing it back to normalcy, but the film shows another aspect of it. And in fact, somebody who's spoken up very strongly for KPS Gill is journalist Tavleen Singh, who I spoke to earlier. In the cacophony around the film Satluj, very often the context is lost, especially for those people who perhaps are very young or weren't even born at the time in which this film is set. So we are joined today on the show by somebody who has been an eyewitness, who has reported firsthand the events of that time, those terrible decades in Punjab. Mr. Tavleen Singh, thanks very much for speaking to us here on NDTV. I want to start by asking you, first of all, what do you make of this controversy around Satluj? Do you think that it is a depiction, a truthful depiction of what happened, or is there a slant?
4: There is never one truth when it comes to situations like we saw in Punjab. There is the truth of those who believe that the police were out of control, that there were excesses, which there certainly were. And the other truth is that had there not been some real attempt by KPS Gill particularly to crush what was turning into a civil war in which ordinary villagers were being recruited out of terror, had he not taken the steps that he took then, it is my view

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: वी आर ओवर जिमी।
9: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
12: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
13: अरे मेरे राजा।
14: सबका राजा प्योर मसाला।
15: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
16: When markets close, clarity matters as much as speed.
15: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
16: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
15: Join us before every closing bell
16: on India Market Close.
17: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break.

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. Tonight is an episode of absolute impact because 24 hours ago, the clock began ticking here on India Matters, right here on this show yesterday. And that's why we begin with how this man has finally been arrested thanks to a big NDTV impact that began last night right here on this show. We also have an exclusive interview with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on the entire E20 debate. That's the big lineup right here tonight on India Matters. Let's begin with our top story tonight. Nine hours, viewer. That's how long it took. Just 9 hours after I asked and interrogated Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre here on NDTV this morning at 8:30. The police finally moved in and arrested him just a couple of hours ago. It was a full 48 hours after his shockingly violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story, ensured that this was not another Sena-slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Udhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Bhaviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow, and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence. And today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Ramesh ji, NDTV से बात करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी मेरा पहला सीधा सवाल आपसे है रमेश जी. ये जो वीडियो जो सामने आया है, जो NDTV ने ब्रेक किया है, सीधा सवाल है रमेश जी, ये है कि क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स, महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए? क्या आपको शर्म नहीं आती?
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है, लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया.
0: वीडियो तो सामने है सर, वीडियो तो सामने है हमारे.
1: नहीं, उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर. वीडियो
1: फोन कान से हटे, फोन पे बात कर रहे थे, हमसे बात ही नहीं कर रहे थे वो.
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का? फोन के ऊपर फोन रखो,
2: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं
2: किसी
1: नहीं,
2: पे
1: नहीं,
2: भी,
1: कभी नहीं
2: किसी पे भी हाथ उठ
1: हमारा हम शिवसैनिक के लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
2: वैभव पे आपने
1: लग रहा होगा लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके पास थे
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
2: और उसका अलग किया अलग नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी
2: ये
1: वो
2: वीडियो पे आ रहा है ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी आप झूठ नहीं,
1: नहीं
2: बोल सकते हैं आप झूठ नहीं,
1: नहीं गले पे
2: हैं।
1: नहीं मारा है कान में फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दे फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से
2: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
2: मेरा सवाल सुनिए चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा आप फोन हटा रहे थे आप एक कॉर्पोरेटर हो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का आपको किसने हक दिया
1: हमको हक हमारे पार्टी के बाल साहब ठाकरे ने दिया जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो
2: हाथ उठाने का हक बाला साहब
1: हमारे भी
2: आपको
1: वहां एक
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया आप
2: ये वीडियो तो देखिए
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या देखने दो ना पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था क्या हो रहा था वो सुनिए हमारे
2: 20 सेकंड मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया 20 सेकंड में बताइए
1: दो मिनट दीजिए
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा
1: हाँ वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी वो प्रेग्नेंट थी उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था उसको लेबर पेन चालू हुआ था उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था कॉलेज बंद था स्कूल बंद था ऑफिसेज बंद थे पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रहे थे ना हमको नंबर दे रही थी तो हम क्या करें नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाएंगे
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते
1: हाँ।
2: आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे आपका ही सरकार है रमेश
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना
2: क्यों नहीं फोन कर रहे
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
2: अरे वाह सर
1: सुविधा लेके पेशेंट को
2: आपने कानून बोला
1: बराबर
2: इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और
2: कानून का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा फिर से वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं आप मैंने सुन लिया आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो ठीक है आप एक हीरो हो आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है ये आप बोल रहे हैं मैं आपसे
1: सरासर झूठ है हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए आपने जो किया है ये पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं
2: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: नहीं, मैं फोन के ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: फोन पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते हैं,
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया? आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है, डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए, इधर उधर मत,
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे,
1: जान बचाने के लिए
2: जो आपने जो किया है,
1: मेरे को उधर डॉक्टर गुंडे लगे,
2: सर सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
1: कुछ नहीं किया है,
2: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो? आप नागरिक,
1: अगर ये हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
2: मतलब
1: मैडम उस ये आप, साथ बात
2: तो के बाद रमेश जी
1: मामला कैसा सोल्व हो गया
2: तो,
1: और
2: तो
1: ये 5 घंटे से ये कोर क्यों उसको रखड़ा रहे थे?
2: रमेश जी शर्मिंदा
1: मत, डॉक्टर
2: आप बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना, कोई डिसीजन ले रहा था,
2: तो फिर आप ये सुन रहे हैं
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे?
2: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला,
1: लड़की थी
2: आगे, सर सर सर
1: ड्यूरी डेट पे आ गया था,
2: ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था,
2: ये सब
1: बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे,
2: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड, कास्ट कार्ड, कम्युनिटी कार्ड, ये सब उसके पीछे मत छुपिए, आप दलित कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड,
1: उसमें हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर?
2: नहीं नहीं नहीं,
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
2: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको चुन के
2: दिया
1: डॉक्टर ने, चुन के नहीं,
2: आपको नहीं जाने देंगे,
1: नहीं हमको पब्लिक ने चुन के दिया है,

0: सर
1: आपको
0: सर सर
1: सीधा सवाल सुनिए,
0: चुन के दिया
1: सीधा सवाल सुनिए,
0: ले लड़ेंगे ना
1: रमेश माथुर,
0: डॉक्टर का तो हम सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
1: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए, मैंने
0: बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया
1: के लिए, जो
0: हम जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं,
1: लेकिन ये डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
0: बेकार था,
1: साफ साफ
0: हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर।
1: सीधा सवाल
0: ऐसा नहीं होना चाहिए,
1: क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे
0: हैं,
1: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि आप एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
0: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा बोल रहे हैं
1: सर,
0: हम कौन सा टोन वापरेंगे,
1: मैं सीधा सवाल सुनिए,
0: हमको शर्म नहीं
1: आई,
0: पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना, डॉक्टर ने चुन के दिया सर,
1: नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
0: नहीं सर, एक मेरा
1: अफसोस नहीं है, बिल्कुल अफसोस नहीं है,
0: आप मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट,
1: नहीं सीधा सवाल सर,
0: ऐसा
1: सीधा सवाल है,
0: मेरे को मैं तीन लड़के मेरे को

0: Good evening and welcome. You're on India Matters this Wednesday night. Tonight is an episode of absolute impact because 24 hours ago, the clock began ticking here on India Matters, right here on this show yesterday. And that's why we begin with how this man has finally been arrested, thanks to a big NDTV impact that began last night, right here on this show. We also have an exclusive interview with Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on the entire E20 debate. That's the big lineup right here tonight on India Matters. Let's begin with our top story tonight. Nine hours, viewer. That's how long it took. Just 9 hours after I asked and interrogated Shiv Sena co-operator Ramesh Mathre here on NDTV this morning at 8:30, the police finally moved in and arrested him just a couple of hours ago. It was a full 48 hours after his shockingly violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story, ensured that this was not another Sena-slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Uddhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two things changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Baviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow, and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence, and today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Rameshi, NDTV se baat karne ke liye dhanyavaad, lekin mera pehla seedha sawal aapse hai, Rameshi. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawal hai, Rameshi. क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
0: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
1: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर वीडियो
1: फोन कान से हटा फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठा
1: उसका फोन के ऊपर मारे फोन रखो
2: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: भी कभी नहीं किसी पे भी हाथ
1: उठा हमारा हम शिवसैनिक है, लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते।
2: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
2: हैं पे आपने हाथ उठाया है,
1: लेकिन वो जो
2: गुंडे आपके पास थे
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
2: नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी।
2: ये वीडियो पे आ रहा है, ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप झूठ नहीं बोल
1: गले पे नहीं मारा है, कान में फोन रखा था, फोन के ऊपर हमने झटका दे के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से।
2: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन।
2: मेरा सवाल सुनिए। चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा, आप फोन हटा रहे थे, आप एक कॉर्पोरेटर हो, आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का? आपको किसने हक दिया?
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो,
2: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
1: हमारे भी
2: आपको
1: वहां एक।
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए,
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था,
2: बताओ
1: क्या हो रहा था वो सुनिए। हमारे
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए,
2: उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रही थी, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ। आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी,
1: बेड अवेलेबल नहीं है ना,
2: क्यों नहीं फोन करते?
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो सुविधा लेके पेशेंट को
2: बराबर इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना और
2: कानून का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आता है तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से उसको वो जो घटना घटी ना वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला और हमारे
2: रमेश जी
1: सुनिए बात मेरा, सर मेरा बात सुनिए।
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया। आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी आपके सरकार आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है वो पूरे पूरा सामने है, सब देख रहे हैं एनडीटीवी पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं,
2: जो गुंडे हैं आपके साथ है,
1: तो मार रहे हैं ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: गले पे मारा है,
1: फोन पे मत रहो, बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था, बंबई कैसे जा सकते है,
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया?
1: बोलो
2: जाने का, आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है, डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए,
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ
1: जान बचाने के लिए,
2: जो आपने जो किया है,
1: मेरे को तो उधर डॉक्टर गुंडे लगे।
2: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉपरेटर हो, आप कैसे कर सकते हैं ये सब? अगर किसी ने बेड नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, अगर किसी ने किसी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया,
1: कुछ नहीं किया है,
2: आप पुलिस के पास जा सकते हो, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के पास जा सकते हो, आप किसी के पास जा सकते हो, आप रूलिंग पार्टी के कॉर्पोरेटर हो, आप हाथ कैसे उठा सकते हो?
1: अगर हम ऐसा नहीं करते, जो अगर हम फोन के फोन नंबर मैडम का लिया और मामला आधा घंटे में सोल्व हुआ, डिलीवरी भी हो गया, मैडम ने शिफ्ट किया पेशेंट को, हमारे सीएमओ ने
2: मतलब
1: मैडम उसके साथ बात करने के बाद
2: आधा घंटे में
1: मामला कैसे सोल्व हो गया? और ये 5 घंटे से ये क्यों उसको रखना रहे थे?
2: रमेश जी, शर्मिंदा
1: दोनों डॉक्टर।

0: बेसिकली
1: रखड़ा के रखा था ना कोई डिसीजन ले रहा था,
0: तो फिर आप ये
1: सुन
0: रहे
1: और इसके लिए फिर क्या कर सकते थे हम लोग।
0: मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हो एनडीटीवी पर कि आगे जाके भी अगर किसी को बेड नहीं मिला
1: थी,
0: आगे सर सर सर ये सब
1: लेबर पेन शुरू हुआ था,
0: ये सब
1: बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे।
0: डोंट प्ले द कास्ट कार्ड कम्युनिटी कार्ड ये सब उसके छुपिए आप, दलित कार्ड ये कार्ड वो कार्ड उस
1: नहीं, नहीं, हम उसके ऊपर स्टिकअप रहेंगे सर।
0: नहीं नहीं
1: हम उसके ऊपर स्टिकअप रहे, हम पब्लिक
0: हम मूर्ख नहीं है,
1: हमको
0: हम
1: चुन के
0: दिया
1: डॉक्टर ने चुन के नहीं दिया
0: आपको, नहीं जाने देंगे
1: नहीं, हमको पब्लिक ने चुन के दिया है सर।
0: आपको
1: सर सर
0: सवाल सुनिए,
1: चुन के दिया
0: सवाल सुनिए,
1: लड़ेंगे ना
0: रमेश
1: और डॉक्टर का तो हम सम्मान करते हैं कि कोरोना के सीजन में कोरोना का
0: आपका जो सम्मान है डॉक्टर के लिए
1: बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया
0: के लिए जो
1: हम जिसको हम कभी भूलेंगे नहीं।
0: डॉक्टर्स के लिए सम्मान जो है आपके पास
1: बेकार था, हमारा पेशेंट मर सकता था उधर जगह पे, मरने की नौबत आए थे हमारे पेशेंट की सर।
0: सीधा सवाल
1: ऐसा नहीं होना चाहिए,
0: क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे
1: हैं सर?
0: क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू हुआ था आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अफसोस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अभी कि क्योंकि अभी जब आपका टोन में आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैं निकाल रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं एक मैसेज भेज रहे हैं कि आगे जाके भी अगर ऐसा कुछ
1: आप हमको गुंडा बोल रहे हैं, किसने दिया बोल रहे हैं गुंडा गुंडा बोल रहे हैं
0: सर,
1: हम कौन सा टोन वापरेंगे?
0: मैं सीधा सवाल सुनिए,
1: हमको शर्म नहीं आई,
0: सवाल सुनिए,
1: पब्लिक ने हमको चुन के दिया ना डॉक्टर ने चुन के दिया सर।
0: नहीं नहीं आप दो चीज बोल रहे हैं, एक चीज सुनिए, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये है कि अगर आगे जाके भी ऐसा कुछ होता है क्या आप ऐसे ही मारेंगे डॉक्टर्स को, या आपको अफसोस है कि ऐसा हुआ है?
1: नहीं सर, एक मेरा
0: बात नहीं है, बिल्कुल आप
1: मेरे को एक मिनट दो, आधा मिनट
0: नहीं, सीधा सवाल सर,
1: ऐसा
0: सीधा सवाल है, सीधा सवाल
1: मेरे को, मैं तीन लड़के मेरे को

0: Violent assault on doctors and nurses at a government hospital in a Mumbai suburb where he is an elected representative for the ruling Shinde Sena. Now, let's be clear tonight. The government and police came under immense pressure to act and sustained scrutiny centered around NDTV's unwavering spotlight on this story ensured that this was not another Sena slapping incident that quietly disappeared from the headlines. Because this kind of vigilante politics is hardly new, viewer, to Maharashtra. Across the different Sena factions over the decades, Udhav Sena, Shinde Sena, Maharashtra Navnirman Sena, street muscle and intimidation have too often been worn as political badges of honor. It still is. But this time, Eknath Shinde's co-operator went too far. Perhaps the hope was that this would blow over like so many other episodes of political thuggery. But two things changed the equation. First, the brazen assault on a woman doctor, Dr. Srishti Bhaviskar, and other healthcare workers struck a nerve across the country. Doctors, women, and ordinary citizens looked at that video and saw not power, but cowardice. Second, once this story was picked up by us here on NDTV, it became impossible to ignore. Other media had no choice but to follow, and public outrage only grew louder. Now, I will not claim victory tonight. Holding the powerful to account is our job, but I do want to assure every doctor, every nurse, and every citizen watching tonight that we will not move on simply because an arrest has been made. Ramesh Mathre is no longer just another Sena thug. He has become a symbol of everything people are tired of and hate about our politics. The bullying, the entitlement, the violence, and today India is saying one thing loudly and clearly, enough is enough. And like I said, just 10 hours ago, a 26-minute interview by me of Ramesh Mathre. He chose to take my questions and he probably regretted it because a short while later, he was arrested. Take a look. And joining me live from Mumbai tonight is Ramesh Mathre, co-operator of the ruling Shiv Sena Shinde faction in Maharashtra, who was caught on CCTV camera along with his accomplices thrashing lady doctors and nurses inside a hospital in Dombivli Kalyan. Rameshi, NDTV se baat karne ke liye dhanyavaad, lekin mera pehla seedha sawaal aapse hai, Rameshi. Ye jo video jo samne aaya hai, jo NDTV ne break kiya hai. Seedha sawaal hai, Rameshi. क्या आपको जरा भी शर्म नहीं आती है लेडी डॉक्टर्स महिला डॉक्टर्स और नर्सेस पे हाथ उठाते हुए क्या आपको शर्म नहीं आती
1: मेरे को उस बात का पूरा अफसोस है लेकिन ये सरासर झूठ बात है कि लेडी डॉक्टर के ऊपर हमने हाथ उठाया
0: वीडियो तो सामने है सर वीडियो तो सामने है हमारे
1: नहीं उसका फोन कान से हटाया हमने
0: सर वीडियो
1: फोन कान से हटे फोन पे बात कर रहे थे हमसे बात ही नहीं कर रही थी वो
0: आपको हक किसने दिया सर हाथ उठाने
1: का फोन के ऊपर मारे फोन रखो
0: आपको आपको किसने
1: नहीं नहीं नहीं नहीं
0: भी कभी नहीं किसी पे भी हाथ
1: हमारा हम शिवसैनिक है लेडी के ऊपर हम कभी हाथ नहीं उठाते
0: आपने हाथ उठाया है एक लेडी डॉक्टर
1: वो जो बता रहे हैं वो जो बता रहे
0: हैं पे आपने हाथ उठाया होगा
1: लेकिन वो जो
0: गुंडे आपके पास थे
1: फोन के ऊपर हमने फोन उसका अलग किया
0: और उसका अलग नहीं किया आपने उसके हाथ और गले
1: हमसे बात नहीं कर रही थी
0: ये वीडियो पे आ रहा है ये वीडियो पे आ रहा है रमेश जी आप झूठ नहीं बोल सकते हैं आप झूठ नहीं बोल
1: गले पे नहीं मारा है कान में फोन रखा था फोन के ऊपर हमने झटका दिया के फोन हमने अलग कर दिया उसका हाथ से
0: रमेश जी
1: फोन पे बात कर रहे थे और हमारे पेशेंट का कंडीशन
0: मेरा सवाल सुनिए चलो मान लेते हैं कि आपने इसके हाथ पे मारा आप फोन हटा रहे थे आप एक कॉपरेटर हो आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आपको किसने हक दिया हाथ उठाने का आपको किसने हक दिया
1: हमको हक हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया जहां भी अन्याय हो वहां आप अपना तरीका दिखा सकते हो
0: हाथ उठाने का हक बालासाहेब
1: हमारी भी
0: आपको
1: वहां एक
2: आप महाराष्ट्र के नागरिकों को बोल रहे हैं कि आपके
1: अन्याय के खिलाफ कुछ भी आप, हमने लेडी डॉक्टर के ऊपर नहीं उठाया। आप
2: सर ये वीडियो तो देखिए
1: क्या वो डॉक्टर एक पेशेंट को सरेआम मार सकते हैं क्या? देखने दो ना, पब्लिक को कुछ मालूम नहीं हुआ क्या हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था वो सुनिए। हमारे
2: 20 सेकंड, मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, आप बताइए आपने आपने ऐसे महिला डॉक्टर और नर्सेस पे हाथ क्यों उठाया? 20 सेकंड में बताइए।
1: दो मिनट दीजिए
2: बताइए, उसके बाद मैं सवाल करूंगा।
1: हाँ, वहाँ एक लेडी डॉक्टर प्रेग्नेंट थी, एक लेडी थी वो प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी डे पूरा हुआ था, उसको लेबर पेन चालू हुआ था, उसका पेट में वो बच्चों ने टूल पास किया था, क्रिटिकल कंडीशन थी, और उसको वहाँ बेड नहीं था करके उसको साइन भेज रहे थे। पूरा मुंबई बारिश में डूब गया था, कॉलेज बंद था, स्कूल बंद था, ऑफिसेज बंद थे, पूरा ट्रैफिक जाम था, और बारिश इतना था कि डोंबिवली से निकलने के लिए 3 घंटा लगता था, और उसके पास 10 मिनट भी नहीं था, और ना वो हमारे CMO को फ़ोन लगा रही थी, ना हमको नंबर दे रही थी, तो हम क्या करें? नंबर नहीं दे रहे थे करके वो डॉक्टर के ऊपर
2: जो महिला डॉक्टर पे हाथ उठाया गया,
1: फिर डॉक्टर ने जो नंबर
2: महिला डॉक्टर
1: नहीं उठाया हमने।
2: अगर बेड अवेलेबल नहीं है, अगर बेड अवेलेबल नहीं है क्या आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं फोन कर सकते? हाँ, आप एक बेचारे डॉक्टर पे क्यों हाथ उठा रहे हैं? नर्सेस और डॉक्टर्स पे क्यों हाथ उठा रहे? आपका ही सरकार है रमेश जी, आपका ही सरकार है।
1: आप बेड अवेलेबल नहीं है ना,
2: क्यों नहीं फोन कर सकते?
1: सुनिए मेरा बात भी सुनिए जरा, अगर अगर बेड अवेलेबल नहीं है ना, तो सर एक कानून है महापालिका का कि अगर अपने पास जो सुविधा नहीं है तो
2: अरे सर,
1: सुविधा लेके पेशेंट को
2: आपने कानून डाला, बराबर इसके इसके लिए बहुत तालियां आपको कि आपने कानून का शब्द
1: राहत देना, और
2: कानून का शब्द
1: यही बात हम उनसे बोल रहे थे कि आप में हाँ तो हाँ ऐसा है हमारे महापालिका में, और कई बार हमने किया है क्योंकि मेरा वार्ड में वो हॉस्पिटल आ रहा है आता है, तो वहाँ मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ, पूरा ग्रामीण लोकसभा वार्ड है ना, वहाँ से बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं, और ऐसा कई मामले हमने सॉल्व किया है, लेकिन ये नए डॉक्टर है बहुत घमंडी है, और उन्होंने मैडम का नंबर नहीं दिया CMO का हमारा। फिर से उसको वो जो घटना घटी ना, वो लेडी के ऊपर हाथ हमने नहीं उठाया और कभी ना उठाएंगे, लेकिन जो डॉक्टर के साथ हुआ ना तभी हमको नंबर मिला, और हमारे सुनिए बात मेरा सर मेरा बात सुनिए।
2: सुन लिया जो आप बोल रहे हैं, आप मैंने सुन लिया, आप बेसिकली ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं कि आप एक जननायक हो, ठीक है, आप एक हीरो हो, आपने एक नायक हो जिसने नागरिकों का जो का जो कंसर्न डिमांड थे, आपने आपने आपने एक महिला डॉक्टर और नर्स पर हाथ उठा के आपने अपना फर्ज निभाया है, ये आप बोल रहे हैं। मैं आपसे
1: सरासर झूठ है, हमने किसी नर्स के ऊपर और किसी नहीं नहीं सर, एक कैमरा में दिखता रहेगा, लेकिन मैं फोन हटाया वो तो आप
2: रमेश जी आपके पार्टी, आपके सरकार, आपके समर्थकों को शर्मिंदा मत कीजिए, आपने जो किया है ये पूरा सामने है, सब देख रहे हैं NDTV पर, ये वीडियो सामने है, आपका हाथ दिख रहा है,
1: नहीं
2: जो गुंडे हैं आपके साथ हैं,
1: नहीं मैं फोन के ऊपर, उसके फोन के ऊपर फोन हटाया झटके से,
2: एक रजिस्टर लेके किसी के सर पे मारा है,
1: झटके से फोन हटाया,
2: फोन पे मत रहो
1: बिजी रहो, पेशेंट के बारे में सोचो, यही बोल रहा था। बंबई कैसे जा सकते है, पेशेंट बंबई कैसा पहुंच सकता है?
2: फिर से मैं पूछता हूँ आपसे आपको हक किसने दिया?
1: बोलो
2: जाने का, आप ऐसे हॉस्पिटल जाके हाथ उठा के किसी पर मारना, फोन साइड पे करना, जो भी आप बोल रहे हैं, आपने हिंसा इस्तेमाल किया,
1: तो क्या आप डॉक्टर को परमिशन दिया है? डॉक्टर को परमिशन दिया है उधर ही जगह पे मारने का?
2: इधर उधर मत कीजिए
1: डॉक्टर को किसने हक दिया पेशेंट के केयर ना करना? डॉक्टर किस लिए होता है? भगवान नहीं आ सकते इसके लिए भगवान ने डॉक्टर बनाया?
2: गुंडे हो आप, कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, ये तो साफ कर दीजिए, आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो? अगर आप कॉपरेटर हो तो कानून के अंदर ही काम करना पड़ेगा आपको।
1: आप
2: गुंडे कैसे बन सकते हो?
1: सीधा जवाब देगा,
2: मैं सीधा पूछ रहा हूँ आपसे, मैं सीधा पूछ रहा हूँ
1: जान बचाने
2: आपने
1: के लिए
2: जो
1: से,
2: आप आपने जो किया है
1: मेरे को तो उधर डॉक्टर गुंडे लगे।
2: सर अगर डॉक्टर गुंडे है वो ठीक है, आप नहीं कर सकते, आप